0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।
1: आस हनुमान से, अरदास हनुमान से, जुड़ गया ऐसा विश्वास हनुमान से।

वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोष शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

ए तो हाँ सारे ना अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे ये बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी।

99.2 MHz पर ये तोहा सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला के श्रोताओं तोहा सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये आवाज दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का। लो घर जा।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इतना सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: चसे सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
1: हेलो,
0: hey, तुम खबर है?
1: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, यह सड़क है भैया, संभल के चलना।
2: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
3: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
4: मामा, नो शेयरिंग।
3: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
4: कौन था?
3: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
4: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तुमने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
3: स्मार्ट गर्ल।
4: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
3: याद है ना, नो शेयरिंग।
4: मामा,
5: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
6: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
7: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो फिर रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों जब भी मन चाहे आपका सुकून तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों जब भी मन चाहे आपका सुकून तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों, ये कैमरा दशमलव तो ओमेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने वही एहसास हर बार नया। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे थे अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स, आर्टिफिशियल

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
3: लो घर जा।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
4: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
5: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
4: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
4: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
6: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
7: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: से
1: चौक करना।
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अब यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है।

0: जहाँ एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूँगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूँगा कि आप इस सड़क पे निकलें तो अपना सारा ध्यान यहाँ केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
1: हेलो,
0: तुम खबर है?
1: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना। ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
2: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
3: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
4: मामा, नो शेयरिंग।
3: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
4: कौन था?
3: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
4: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
3: स्मार्ट गर्ल।
4: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूं और अब से लेके 11 बजे तक श्रोताओ रहेंगे आपके साथ, करेंगे आपका मनोरंजन, जानकारियां साझा करेंगे और साथ ही साथ आपके साथ बातचीत का भी आनंद उठाएंगे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आइए जानते हैं इस वक्त का धर्मशाला का तापमान कितना है। 19 डिग्री सेल्सियस तापमान है श्रोताओं और वातावरण में नमी है 45%। जी हाँ, पिछले एक दो दिन से तापमान जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन गर्मियों के दिन हैं और गर्मियों में ख़ास ख्याल रखना है हमें अपना, अपने अपनों का। पानी पीजिए खूब सारा और जितने भी तरल पदार्थ आपको अच्छे लगते हैं उनका सेवन खूब कीजिए, अपने आप को फ्रेश और तरोताज़ा रखिए। और अब कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रोताओं मैंने प्यार किया फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा ट्रैक और बने रहिए हमारे साथ यूं ही 91.2 FM पर।

मंगेशकर की आवाज़ में 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त है आपके साथ आज का विचार साझा करने का, तो आइए सुनते हैं आज का विचार। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से करता है। बादल के टूटने पर पानी की फुहार बना देता है, मिट्टी के टूटने पर खेती रूप ले लेती है, बीज के टूटने पर पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब कभी आप खुद को टूटा हुआ पाएं तो समझ लें कि ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए करने वाला है। जी हाँ श्रोताओं, ज़िंदगी में हम जब टूटते हैं तो हमें लगता है कि ईश्वर जो है वो हमारे साथ गलत कर रहा है, अन्याय कर रहा है। लेकिन जिस तरह से ईश्वर चीज़ों को तोड़ता है और उसका इस्तेमाल अच्छे के लिए करता है, उसी तरह से हम भी अगर टूटते हैं तो हमारा इस्तेमाल भी अच्छे के लिए ही होता है। श्रोताओं, ये था आज का विचार। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का। गीत हमने लिया है हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला पर।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए जब वी मेट फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से इस समय एंजॉय कर रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। ये कार्यक्रम जारी रहेगा 9:30 पर भी। उससे पहले 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार करेंगे प्रदान। प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कल डाले जाएंगे वोट। सुबह 7 से साय 3 बजे तक होगा मतदान। पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की सभी तैयारियां पूरी। मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाली प्रदेश की सबसे लंबे रूट वाली HRTC की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा कल से फिर होगी शुरू। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार, कुछ जिलों में लू चलने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। ये प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कला, जनहित और समाज सेवा, साहित्य और शिक्षा, विज्ञान और अभियांत्रिकी, व्यापार और उद्योग, औषधि, खेल इत्यादि क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। प्रदेश में कल 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान सुबह 7 बजे से साय 3 बजे तक मतपत्र व मत पेटियों के माध्यम से करवाया जाएगा। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: प्रदेश में कल पहले चरण में 1293 ग्राम पंचायतों में प्रथम चरण का मतदान होगा। मतदान के सुचारू संचालन के लिए कुल 8198 मतदान दल गठित किए गए हैं। दूसरे चरण में 28 जबकि तीसरे व अंतिम चरण में 30 मई को मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन चुनावों के लिए प्रदेश भर में कुल 21678 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए सभी मतदान दल अपने अपने केंद्रों में पहुंच चुके हैं। 3 चरणों में होने जा रहे प्रदेश में कुल 3754 ग्राम पंचायतों के कुल 31182 पदों के लिए 70224 उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: इधर पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में जिला सिरमौर में 94 पंचायतों में मतदान होगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में सिरमौर जिला की 94 पंचायतों में मतदान होगा, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है। इन पंचायतों में विकासखंड नाहन की 10, विकासखंड राजगढ़ की 12, विकासखंड ददाऊ की 9, विकासखंड संगड़ाह की 13, विकासखंड शिलाई की 13, विकासखंड पावटा साहिब की 17, विकासखंड पछात की 11 और विकासखंड तिलोरदार की 9 पंचायतें शामिल है। प्रशासन द्वारा मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पंचायती राज चुनाव के दौरान सिरमौर जिला में करीब 500 पुलिस और होमगार्ड के जवान सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से स्वतंत्र और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने व किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहने की अपील की है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वही मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे जिनका नाम उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में शामिल होगा। इधर कांगड़ा जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने बताया कि सभी 895 पोलिंग बूथों पर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अशोक रतन ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी आपात स्थिति या कानून व्यवस्था से जुड़ी घटना से तुरंत निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने अलग अलग स्तर पर विशेष टीमें भी गठित की है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाना पुलिस प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि मतदाता बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली सबसे लंबे रूट पर हिमाचल पथ परिवहन की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा कल से एक बार फिर शुरू हो रही है। क्षेत्रीय प्रबंधक केलंग अंशित शर्मा ने कहा कि केलंग लेह मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिए जाने के बाद ये बस सेवा पुनः आरम्भ की गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति संवाददाता।
3: लाहौल स्पीति और लेह की यात्रा की इच्छा रखने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा इस बार 26 मई यानी कल से शुरू होने जा रहा है। केलंग लेह मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिए जाने के बाद यह सेवा पुनः आरंभ की जा रही है। यह बस सेवा राष्ट्रीय राजमार्ग 03 पर स्थित कई प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे जिस्पा, दाचा, जिंगजिंगबार, बाराला चाला, सरचू, गाटालूप, नकीला, रूम से उपशी और तंगलंगला से होकर लेह पहुंचेगी। HRTC के अनुसार दिल्ली से लेह तक की कुल 990 किलोमीटर है और यात्रा का किराया मात्र 1839 रुपए निर्धारित किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई है। HRTC ने यात्रियों से यात्रा करने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: शिमला जिला में पिछले कुछ दिनों से बच्चों में वायरल हेपेटाइटिस के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस महीने में अब तक दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में 11 बच्चों को हेपेटाइटिस के लक्षणों के चलते भर्ती करना पड़ा है, जिनमें 7 बच्चे हेपेटाइटिस ए से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
4: विभाग के मुताबिक मई महीने में DDU जोनल अस्पताल के बाल रोग वार्ड में हेपेटाइटिस के लक्षण वाले 11 बच्चों को भर्ती किया गया है। इनमें से 7 बच्चों में हेपेटाइटिस ए की पुष्टि हुई है। हल्के लक्षण वाले कई बच्चों का इलाज OPD में किया गया है। ये मामले एक महीने के भीतर धीरे धीरे सामने आए हैं। रोज या एक दिन छोड़कर करीब एक केस रिपोर्ट हो रहा है। प्रभावित बच्चे अलग अलग इलाकों से है और किसी एक क्षेत्र में क्लस्टर नहीं मिला है। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई है। टीमें एक्टिव सर्विलांस, अतिरिक्त मरीजों की पहचान, पेयजल और स्वच्छता की जांच कर रही है। हेपेटाइटिस ए और ई दूषित पानी और भोजन से फैलते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से उबालकर पानी पीने, हाथ धोने, खुले में बिकने वाले कटे फल और भोजन से बचने की अपील की है। साथ ही बुखार, उल्टी, पेट दर्द, पीलिया या गहरे रंग का पेशाब जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 दिनों में अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान ऊना 41.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग ने 26 से 28 मई के बीच ऊना, बिलासपुर, सोलन व कांगड़ा जिला के कुछ स्थानों में लू चलने का अनुमान जताया है। हालांकि विभाग ने 27 मई से देश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 30 मई तक अंधड़, बारिश और गर्जना की संभावना जताई है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल की 1293 पंचायतों में थमा प्रचार, पोलिंग दल रवाना, वोटिंग कल। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कल 1293 पंचायतों में होगी पहले चरण की वोटिंग, प्रधान, उपप्रधान और वार्ड मेंबर के रिजल्ट शाम को। दिव्य हिमाचल के शब्द है, पंचायती राज चुनाव में मतगणना पर सख्ती, रीकाउंटिंग के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय, लिखित आवेदन करना अनिवार्य। चिनाब ब्यास लिंक टनल परियोजना को केंद्र की मंजूरी, खुल सकते हैं आत्मनिर्भर हिमाचल के द्वार, पंजाब केसरी की एक खबर है। मौसम की खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है, 3 दिन तपेगा हिमाचल, ऊना का पारा 41 डिग्री पार। ओवरटेक करने पर पिटा HRTC बस चालक, पति पत्नी सहित 4 गिरफ्तार, दैनिक जागरण की एक खबर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार करेंगी प्रदान। प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कल डाले जाएंगे वोट, सुबह 7 से 3:30 बजे तक होगा मतदान। पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की सभी तैयारियां पूरी, मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाली प्रदेश की सबसे लंबे रूट वाली HRTC की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा कल से फिर होगी शुरू और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार, कुछ जिलों में लू चलने की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा
5: शुरू 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे श्रोताओं इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ, और सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम में। श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और कार्यक्रम में श्रोताओं अब आइए बात करते हैं आज के दिन के बारे में, क्या कुछ खास है आज। आज है श्रोताओं 25 मई 2026 और विश्व थायराइड दिवस आज के दिन जो है वो मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है जो हर साल 25 मई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य थायराइड के रोग और रोगियों के अनुभव और थायराइड रोगों के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन और उपचार के लिए प्रतिबद्ध सभी लोगों को मान्यता देना है। थायराइड रोग संभवतः विश्व स्तर पर सबसे आम अंतःस्रावी विकारों में से एक है, भारत भी इसका अपवाद नहीं है। थायराइड रोग पर किए गए विभिन्न अध्ययनों से अनुमान लगाया गया है कि लगभग 4.2 करोड़ भारतीय भी इससे प्रभावित हैं। श्रोताओं थायराइड रोग और इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कार्यक्रम में आगे। फिलहाल चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं श्रोताओं। गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में चलते हैं, जानते हैं क्या कुछ खास घटा था आज के दिन इतिहास में।

श्रोताओ, आज के दिन यानी 25 मई 1611 मुगल शासक जहांगीर ने मेहरुन्निसा से निकाह किया, जो बाद में इतिहास में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। पच्चीस मई 1915 महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में अपने पहले सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो बाद में साबरमती आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 25 मई 1961 अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने संसद में ऐतिहासिक घोषणा की कि अमेरिका इस दशक के अंत तक मनुष्य को चंद्रमा पर उतारेगा और सुरक्षा

25 मई 1961 भारत के पहले विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को ब्रिटिश निर्मित रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। पच्चीस मई 1963 अफ्रीकी देशों को एकजुट करने और श्वेत शासन के खिलाफ लड़ने के इरादे से 32 देशों ने मिलकर अफ्रीकी संघ का गठन किया। पच्चीस मई 1984 भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। पच्चीस मई 1998 भारत द्वारा किए गए पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद भी यूरोपीय संघ के सभी 15 सदस्य देश भारत पर प्रतिबंध न लगाने पर सहमत हुए। पच्चीस मई 2003 चिली ने अर्जेंटीना को हराकर पहली बार विश्व कप टेनिस का खिताब जीता। श्रोताओ, ये थी कुछ खास घटनाएं जो आज के दिन दर्ज हैं इतिहास के पन्नों पर। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब जानकारियों की ओर रुख करते हैं श्रोताओ। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कल देर साय शिमला में बिग एफएम द्वारा आयोजित बिग इम्पैक्ट अवार्ड्स 2026 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मीडिया केवल समाचार और मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज को दिशा देने, जागरूक करने तथा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला एक सशक्त माध्यम भी है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। कविंद्र गुप्ता ने बिग एफएम को इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज सेवा, नवाचार और जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को पहचान देने का मंच है। उन्होंने कहा कि समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना समाज को ऐसे पुनीत कार्य के लिए प्रेरित करता है। श्रोताओं ये थी जानकारी। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे श्रोताओं इस छोटे से अंतराल के बाद। यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब चलते हैं कार्यक्रम में मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, जब प्यार किसी से होता है। इस फिल्म से ये गीत हमने लिया है श्रोताओ, कुमार शानू और लता मंगेशकर की आवाज़। इंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गीत।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और आज है श्रोताओ 25 मई का दिन। आज मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन का उत्पादन करती है जो सामान्य वृद्धि और ऊर्जा चयापचय के लिए आवश्यक है। थायराइड की खराबी आम है, आसानी से पहचानी जा सकती है और आसानी से इलाज भी किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका निदान या उपचार ना किया जाए तो इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका से लेकर मध्य अफ्रीका तक फैले आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों में विश्व स्तर पर 100 करोड़ से अधिक लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आयोडीन थायराइड हार्मोन के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन इसका वितरण विश्व स्तर पर असमान है और दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में ये और भी दुर्लभ है। आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों में थायराइड की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी का सबसे आम कारण थायराइड की स्व प्रतिरक्षा संबंधी समस्याएं होती हैं, जिनमें ग्रेस रोग और प्रसवोत्तर थायराइड डाइटिस शामिल है, जिनमें थायराइड विशिष्ट स्व प्रतिक्रियाशील एंटीबॉडी पाई जाती है। आयोडीन की कमी और अधिकता दोनों ही इसका कारण बनती है। महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययनों से पता चलता है कि 1% पुरुषों और 5% महिलाओं में चिकित्सकीय रूप से पता लगाने योग्य थायराइड नोड्यूल होते हैं और ये प्रसार उम्र के साथ और आयोडीन की कमी वाले समुदायों में बढ़ता है। और इन कठिन समयों में थायराइड रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसे उजागर करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन करना आवश्यक है। ऐसा करने से निदान, स्क्रीनिंग, उपचार और संभव हो तो रोकथाम के बारे

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब चलते हैं श्रोताओं जानकारियों की ओर। धर्मशाला का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर से क्रिकेट के रंग में रंग चुका है। आईपीएल 2026 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अब सभी की निगाहें 26 मई को होने वाले पहले प्लेऑफ मुकाबले पर टिकी हैं। इस हाई वोल्टेज मैच में शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस और रजत पाटीदार की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगी। मुकाबले के विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में जगह बनाएगी, जबकि हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिलेगा। गुजरात टाइटंस की टीम पहले ही धर्मशाला पहुंच चुकी है, वहीं शनिवार को आरसीबी की टीम भी धर्मशाला पहुंची, जहां खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए फैंस की भारी भीड़ एयरपोर्ट पर उमड़ पड़ी और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को देखने के लिए प्रशंसकों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। आरसीबी टीम के साथ कप्तान रजत पाटीदार, कुणाल पांड्या, टिम डेविड सहित कई खिलाड़ी धर्मशाला पहुंचे और धर्मशाला में पहली बार आईपीएल प्लेऑफ मुकाबले का आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर एचपीसी और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर ट्रैफिक प्लान तक सभी इंतजाम किए गए हैं ताकि दर्शकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हिमाचल की खूबसूरत वादियों के बीच होने वाला ये मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं माना जा रहा। अब हर किसी को 26 मई के उस बड़े मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है, जब धर्मशाला में आईपीएल का रोमांच अपने चरम पर होगा। श्रोताओं, ये थी जानकारी। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम में अब इंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। विजयपथ फिल्म से अलका याग्निक और अनु मलिक, कुमार सानू की आवाज़ में।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में श्रोताओ आपको कार्यक्रम का अगला गीत भी सुनाएंगे, उसके साथ साथ हम बातचीत का भी आनंद लेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम में विश्व थायराइड दिवस की, और इसके बारे में भी कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय जानकारियों के अंतर्गत आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो सिद्धबाड़ी का जोरावर स्टेडियम है वहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा मेला लगा हुआ है जो कि पिछले कल से लगा हुआ है। और आज मेरी उत्सुकता हुई वहाँ पे, एक दुकानदार भाई साहब, उनको पूछा मैंने कि ये कब है, तो उन्होंने कहा आज बड़ा मेला है और आज शाम के बाद ये जो है ये उखड़ भी जाएगा। तो श्रोताओं अगर आप सिद्धवाड़ी या आसपास रहते हैं तो मुझे लगता है कि शाम के समय ज़रूर इस मेले में आइए। छोटे बच्चों के लिए झूले भी हैं, मिठाई की दुकानें भी हैं, जो कि हमारी पारंपरिक मेलों की हम कह सकते हैं रौनक और शान होती हैं। जलेबी पकौड़े ये सब देखने को यहाँ पे मिला, और बच्चों के लिए खिलौने भी हैं और महिलाओं के लिए थोड़ा बहुत जो होता है सामान खरीदारी का वो भी है। और कुछ समय पहले हमारे जो बड़े मेले थे वहाँ पे भीड़ बहुत होती है और लोगों को धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। शाम के समय आप ठंडक में यहाँ आ सकते हैं और झूलों का भी आनंद ले सकते हैं, झूले भी बड़े अच्छे अच्छे लगे हुए हैं। तो इस छोटे से गाँव के प्यारे से मेले का आनंद आप उठाइए, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो मेला है ये भी बहुत विशाल रूप ले लेगा। जब तक ये बड़ा रूप लेता है तब तक आप शांति से आइए और इस मेले का आनंद जो है वो ज़रूर उठाइए। श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और आज जैसे कि हमने बात की कार्यक्रम में विश्व थायराइड दिवस है, तो इसका इतिहास भी जान लेते हैं। सितंबर 2007 में थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल की वार्षिक आम बैठक के दौरान 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। पहला विश्व थायराइड दिवस 2008 में मनाया गया था, और हालांकि थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल ने कभी भी आधिकारिक तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो नहीं किया, फिर भी विभिन्न सदस्य संगठनों द्वारा विश्व स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन ने अपनी वर्षगांठ मनाने के लिए 25 मई 2008 को पहले यूरोपीय थायराइड दिवस की भी घोषणा की, और यूरोप में थायराइड समूहों ने नेटवर्कों को आगे से उस दिन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्रोताओं ये था विश्व थायराइड दिवस का इतिहास, कितने प्रकार के थायराइड जो हैं वो होते हैं इसके बारे में भी कार्यक्रम में हम ज़रूर विस्तार से आपको बताएंगे। फिलहाल चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

श्रोता 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज थायराइड के बारे में, क्योंकि आज मनाया जा रहा है विश्व थायराइड दिवस।

श्रोताओं, थायराइड रोग अपने निदान, उपचार और दृश्यता में अद्वितीय होते हैं। प्रभावी प्रबंधन के लिए शीघ्र निदान और उपचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। थायराइड के 5 सबसे महत्वपूर्ण रोगों में हाइपोथायराइड, थायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म जिसे घेंगा कहते हैं, आयोडीन की कमी से होने वाला विकार, हाशिमोटो, थायराइडिटिस और थायराइड कैंसर शामिल है। हाइपोथायराइडिज्म ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म मस्तिष्क क्षति से बचाव के लिए शीघ्र निदान और उपचार आवश्यक है। भारत में ये समस्या आम है, जहां हर 2640 नवजात शिशुओं में से एक में ये पाई जाती है। जागरूकता की कमी और स्क्रीनिंग कार्यक्रमों का अभाव निदान में देरी का एक मुख्य कारण है। इसके बाद आता है श्रोताओं हाइपरथायराइडिज्म। ये थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के कारण होता है, जिससे शरीर की चयापचय प्रक्रिया तेज हो जाती है। हाइपरथायराइडिज्म के लक्षणों में वजन कम होना, हाथों में कंपन, तेज या अनियमित हृदय गति आदि शामिल हो सकते हैं। इसके बाद आता है गंडमाला, यानी थायराइड ग्रंथि का बढ़ना। थायराइड के कार्य में परिवर्तन से संबंधित भी हो सकता है और नहीं भी। भारतीय शोध ने आयोडीन की कमी और स्थानीय घेंगा रोग, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में ये पाया जाता है, और आयोडीन की कमी से नवजात शिशुओं में ये समस्या जो है ये पाई जा सकती है। परिणाम स्वरूप भारत सरकार द्वारा नमक आयोडीनीकरण कार्यक्रम लागू किया गया, और ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म की व्यापकता को कम करने में सफल रहा। श्रोताओं, इसके अलावा दो और रोग हैं जो थायराइड के बढ़ने से या थायराइड ग्रंथि की वजह से जो है वो बढ़ने से होते हैं। इसके बारे में भी कार्यक्रम में हम आगे बातचीत करेंगे और क्या उपाय जो हैं वो किए जा सकते हैं, जिससे कि हम इन रोगों से बचाव कर सकें। फिलहाल कार्यक्रम में आपको गीत सुनवाएंगे। कार्यक्रम का अगला

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और कार्यक्रम में अब फिर से समय है अंतराल का, यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में आप लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, और ये गीत हमने लिया है श्रोताओं कॉकटेल फिल्म से।

94.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में श्रोताओं आज हम बात कर रहे हैं विश्व थायराइड दिवस के बारे में, किस तरह से बचाव किया जा सकता है, आइए इस पर भी थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं। थायराइड रोग से बचाव के लिए कुछ उपाय हैं जिनमें कि जीवन शैली से जुड़े विभिन्न कारकों और व्यवहारों को अपनाना शामिल है, जैसे पर्याप्त आयोडीन का सेवन करना, सेलेनियम और आयरन युक्त स्वस्थ आहार बनाए रखना, धूम्रपान से परहेज करना, शराब और मादक पदार्थों से भी परहेज करना, तनाव प्रबंधन करना, यानी तनाव अगर होगा तो उससे भी थायराइड रोग के जो है वो लक्षण बढ़ते हैं। पर्याप्त और गहरी नींद लेना भी बेहद ज़रूरी है श्रोताओं, और पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बनाए रखना, उसके लिए सुरक्षित धूप में समय जो है वो बिताना। इसके अतिरिक्त किसी भी संभावित थायराइड विकार का शीघ्र पता लगाने और उपचार के लिए नियमित जांच और थायराइड कार्यप्रणाली की निगरानी महत्वपूर्ण है। श्रोतो गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ, और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत तेरे नाम फिल्म से।

श्रोतो, तेरे नाम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। जी हाँ श्रोताओं, आपसे मिलना यानी हमारे रेडियो गुंजन के प्यारे प्यारे श्रोताओं से, रेडियो गुंजन के माध्यम से मिलना और आपसे बातें करना हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और हम बातें करते रहते हैं और हमारे प्यारे प्यारे श्रोता जो हैं वो हमारी बातों को सुनते रहते हैं। खैर, आपकी भी बातें हम सुनते हैं श्रोताओं, उसके लिए रेडियो गुंजन आपके लिए लेकर के आता है प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। और हर दिन हमारा जो कार्यक्रम है शाम 4 बजे इंदी अपनी गप्पा, उसमें आप हमारे RJ रेडियो जॉकी जो सचिन कपूर हैं उनसे बात करते हैं फ़ोन पे। तो आप भी हमसे बातें करते हैं, हम भी आपसे बातें करते हैं, इसलिए हमें भी यहाँ आना, आपसे बातें करना बेहद अच्छा लगता है। और श्रोताओ, अब हम पहुँच गए हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। ये कहना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब समय है, चलता रहता है। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, इसी वादे के साथ कि बहुत जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: पापा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: पापा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
3: लो घर जा।
1: अप्पा अप्पा ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
4: अरे इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
5: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
4: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
4: हाँ पक्का।
1: अप्पा ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
6: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना।
7: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: 这是
1: चाल करना
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: hey, तुम खबाए
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
7: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
8: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, हिम्मत तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
3: लो घर जा।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
4: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
5: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
4: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
4: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
6: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
7: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: 这是
1: 超开呢
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो अभी तो सड़क खाली लग रही है पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे
2: हेलो
0: हे तुम खबर है
2: जैसे चौकन्ना रहिए
0: याद रखना यहां हर पल चौकन्ना है रहना ये सड़क है भैया संभल के चलना
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया पर गलत होता देखना भी अपराध है ये समझ किसी को आता कहाँ है कृष्ण आते हैं समझाने आज भी बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है
4: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है
5: मामा नो शेयरिंग
4: कोई स्पेशल हाँ हाँ बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए
5: कौन था
4: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर पिन और ओटीपी मांगा है
5: और आप मान गए जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे
4: स्मार्ट गर्ल
5: याद रहे मामा डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें
4: याद है ना नो शेयरिंग
5: मामा
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ
7: सुनो एक बात बताओ शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली
8: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो जिंदगी तो शादी के बाद होती है बीवी के साथ रोटियां बनवाओ खाना बनवाओ

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाली है। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है और मैं ऑर्गन इंडिया की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस बार भी एक अंगदान से जुड़ी कहानी आपको सुनाने वाले हैं। पर्पस सिर्फ यही है कि आपको अवेयर किया जा सके, आपको इससे जुड़ी हुई जानकारी दी जा सके और ऐसे लोग जो लोग सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं उनको मदद की जा सके, उनका डर मिटाया जा सके। तो दोस्तों, देर ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं और अपने मेहमान से आज मुलाकात करते हैं। हमारी आज की जो मेहमान है वो जोधपुर की रहने वाली हैं। इनका नाम है मुद्रिका गहलोत और इनका परिचय मैं इस बात से देना चाहूंगा कि इन्होंने 2018 में अपने फादर की जान बचाने के लिए उनको अपनी एक कुंडली डोनेट करी थी। तो मुद्रिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सौरभ जी।
2: मुद्रिका जी, देर ना करते हुए मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो आपको दे दिया है, अगर आप इसके अलावा कुछ बताना चाहती हैं तो आप बिल्कुल बता सकती हैं, अदरवाइज सीधे आपके पापा के बारे में बात करते हैं कि 2018 में ऐसा क्या हुआ कि किडनी ट्रांसप्लांट तक की बात, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट तक बात पहुंच गई, मतलब कब ये बीमारी शुरू हुई, क्या सिचुएशन हुई, यहाँ तक कैसे बात पहुंची?
3: जी, 2017 में एक रेगुलर चेकअप के थ्रू हम लोगों को ये पता चला था कि उनका बीपी बहुत हाई है एंड इट वाज मोर देन लाइक 200 प्लस था। इट वाज अ रेगुलर चेकअप, हमारे डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे बात चल रही थी। तो जब चेकअप कराया था इवन ही वाज शॉक्ड, उनको भी ऐसा लगा था कि अचानक से इतना कैसे हो सकता है। तो उन्होंने एक बेसिक टेस्ट वगैरह लिख दिए थे। तो द नेक्स्ट डे जब हम लोगों ने टेस्ट वगैरह कराया तो हमें पता चला कि वो ऑलरेडी बहुत टाइम से हाई था, क्योंकि मेरे पापा खुद मेडिकल में हैं तो, और वो टचवुड, वो काफी फिट हैं अभी तक भी।

0: तो जी आपने बोला रेगुलर चेकअप, मतलब उनके वजह उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, वो कुछ बीमार नहीं थे, उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं थे, जस्ट चर्चा के दौरान उन्होंने कुछ बताया डॉक्टर्स ने, तो ये कैसी सिचुएशन हुई? मतलब थोड़ा सा मैं इसे डिटेल में समझना चाहता हूँ, बिकॉज हम लोग हमेशा सलाह देते हैं दूसरे मरीजों को कि आप रेगुलर चेकअप करवाते रहिए ताकि किसी भी बीमारी का अर्ली डिटेक्शन हो सके, अगर गड़बड़ हो रही है या, तो यहाँ पे तो उल्टी बात हो रही है कि रेगुलर चेकअप के दौरान सडनली किडनी फेलियर हो रहा है एंड देन ट्रांसप्लांट तक बात पहुंच रही है।
1: डैड का मोस्टली ये था क्योंकि मैंने कहा वो मेडिकल में थे तो उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि हाँ मतलब उनको खुद को भी सारे टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि जब तक मेनली हम लोगों में क्या होता है कि अब हमें ये समझ में आया है इन लास्ट 5 इयर्स कि क्यों रेगुलर चेकअप इम्पॉर्टेंट है, आप 6 महीने में 1 साल में क्यों एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप कराओ, यही रीजन है कि हम लोग बहुत इजीली ले लेते हैं, जब तक कोई प्रॉब्लम आती नहीं है तब तक हम चेकअप कराने जाते नहीं है, राइट? ये एक ह्यूमन बिहेवियर होता है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से जैसे मेरा मम्मा का हम लोग तो करवाते रहते हैं बिकॉज वी आर ऑलवेज कंसर्न, डैड ने कभी उस चीज को इतना लिया नहीं, ही थॉट कि मैं ठीक हूँ, कभी कुछ हुआ नहीं है, कभी भी उनको हेडेक, ये छोटी छोटी चीजें, ही वाज ऑलवेज फिट, तो ही नेवर वेंट इनटू इट। जब एक बार ऐसा हुआ कि हमने कंटिन्यूसली 2 दिन तक डैड को देखा कि उनका थोड़ा हेडेक वगैरह हो रहा है तो मम्मा वॉज कंसर्न, तो कहीं ना कहीं मम्मी का फोर्स था, डॉक्टर आए हुए थे घर पे क्योंकि दादी का भी चेकअप था, मम्मी भी करवा रही थी, तो उन्होंने रैंडमली बस डॉक्टर से सिर्फ इतना कहा कि सर प्लीज आप इनका भी ले लीजिए, तो इवन द डॉक्टर वॉज लाइक नहीं नहीं इनको तो क्या होगा, बिकॉज उन्होंने भी हमें स्टार्टिंग से देखा है, पापा को देखा है, तो ही वॉज ऑल्सो लाइक कि नहीं इनको कुछ नहीं होगा, आप चलो आप बोल रहे हो तो मैं कर लेता हूँ। तो दिस वॉज अ सिचुएशन विद डैड स्पेसिफिकली कि ऐसा क्यों रैंडमली इट हैपेंड।
0: ओके, तो चलिए फैमिली की बात करते हैं, तो जब भी मतलब ऐसी सिचुएशन सामने आती है तब जनरली डिनाइल होता है एक तरह से कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, तो आपकी फैमिली आपका आपके फादर का क्या रिएक्शन था जब सडनली ये सब चीजें इस लेवल पर पता चली?
1: मेरे फादर का डिनाइल था, आई अग्री फॉर दैट, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि यू नो फादर्स आर स्ट्रॉन्ग, दे आर सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग, ऐसा उन्हें बनाया जाता है, समझाया जाता है, तो उनका ऑफकोर्स थोड़ा सा था, बट द मोमेंट हमें पता चला कि ऐसा कुछ है, मैं मेरी छोटी बहन और मेरी मदर वी वर वेरी कंसर्न, हमें पता है क्या सिचुएशन होती है बिकॉज नाना को हमने देखा है, जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, सो वी न्यू दैट बीपी इज अ थिंग जो आपके हार्ट और किडनी को बहुत जल्दी इफेक्ट कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलता और वो यू नो अंदर ही अंदर समथिंग हैपेंस, तो हम इस चीज को लेके थे श्योर कि कहीं कुछ हो सकता है एंड वी टुक अप्रोप्रिएट सिचुएशंस, हम डिनाइल में नहीं थे।
0: सो वंस इट इज डिटरमाइंड ये हो गया है, देन क्या हुआ, देन आपने क्या एक्शन लिया इस पर?
1: क्योंकि उनका बीपी बहुत ज्यादा था और दोनों किडनी ऑलमोस्ट 90% फेल थी, जो डॉक्टर ने फर्स्ट हमें रिकमेंड किया था वाज टू बी ऑन डायलिसिस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप राइट कि आप डायलिसिस पे आ जाओ, और फर्स्ट डे जब एडमिट हुए थे तभी उनका 2 बार डायलिसिस हुआ था, उनका क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा हाई था, मतलब रिपोर्ट के बाद ऑफकोर्स जब हम लोगों ने रिपोर्ट करवाई किड पता चला क्रिएटिनिन बहुत हाई था तब ये सिचुएशन थी, बट जैसे मैं बहुत मतलब गूगल वगैरह इंटरनेट यूज करना आज बहुत इजी एक्सेस हो गया है, तो हमें मुझे बहुत था कि टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो जब हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था तो वी न्यू दैट डायलिसिस ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता, आई मीन बोथ द केसेस, मैंने वो भी देखे हैं जो 4-4, 5-5 साल 8-8 साल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, बट वी हैड एन अंडरस्टैंडिंग के कहीं ना कहीं दिस विल यू नो कम टू एन एंड, मे बी कहीं कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो हम उस चीज के लिए थोड़ा रेडी नहीं थे, तो वी थॉट ऑफ काफी लोगों से बात करी, काफी डॉक्टर से बात करी, ऑफकोर्स सजेशन हुए थे, पहली बार ऐसी सिचुएशन है फैमिली के अंदर, तो देयर वर लॉट ऑफ डिस्कशन वी केम टू।
0: मेरा सेम नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि आपके फादर ऑलरेडी मेडिकल फील्ड से हैं और दिन रात डॉक्टरों के टच में रहते हैं, एंड आप भी इतना गूगल जानते हो, आप एजुकेटेड हो, अवेयर हो चीजों को लेकर, तो 17 लोगों से मिले होंगे, 17 बातें सुनी होंगी, 17 सजेशन सुनी होंगे, तो फाइनली कंक्लूजन कैसे पहुंचा कि ट्रांसप्लांट तक, किस हॉस्पिटल में आपने दिखाया, कहाँ ट्रांसप्लांट करने का फैसला किया?
1: जी, जैसे जोधपुर के ही हॉस्पिटल में थे हम लोग,

0: मेडिपल्स में, क्योंकि वो रेलवे से अफिलिएटेड है तो हम लोग मेडिपल्स में डायलिसिस करवा रहे थे। जैसे आपने कहा 17 लोगों से मिलते हैं, पापा डॉक्टर हैं, ऑफ कोर्स जब डायलिसिस करवाते हैं तो आप अकेले बेड पे नहीं होते, आपके आसपास कम से कम 7-8 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो आप सबसे बात करना चाहते हैं, कोई वहाँ पे 2 साल से है, कोई 1 साल से है, कोई अभी आया है, तो सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। और इसी तरीके से जैसे मैंने, हम लोग बैठते थे पापा के साथ, मम्मी बैठती थी, कभी मैं, कभी मेरी बहन, तो वी हैड स्लॉट। तो हमें समझ में आया कि ये चीज थोड़ी मोनोटोनस हो गई है, और क्योंकि पापा कहीं ना कहीं डिनाइल में, और हर अल्टरनेट डे आपको जाना पड़ता है या हर 2 दिन में एक बार जाना पड़ता है, तो क्या होता है जब कोई इंसान जाने वाला होता है तो वो पहले से सोचने लग जाता है, कल मेरा अपॉइंटमेंट है, कल मुझे यहाँ जाना है, कल मैं इतने बजे यहाँ से निकलूंगा, मम्मी ये सोचती है कि खाना बनाना है, मैं ये सोचती हूँ कि जॉब से फ्री होकर इतने बजे वहां पहुंचूंगी। सो यू नो द एंटायर फैमिली, इट वी आर लिंक्ड, हमें पता है कि हमें नेक्स्ट डे क्या करना है। तो अगर हफ्ते में 2 से 3 दिन हम ये सोच रहे हैं कि हमें अगले दिन क्या करना है, और जिस दिन वो डायलिसिस पे हैं वो 4 घंटे निकालना उनके लिए कितना यू नो प्रेशर हो जाता है, इट्स वेरी पेनफुल, डीमोटिवेटिंग। तो ऑल दीज सिचुएशन, फाइनली हमारा ये था कि नहीं, हम इस तरीके से तो नहीं देख सकते, वी डोंट वॉन्ट दिस लाइफ, हमें एक बेटर लाइफ चाहिए। एंड हमने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद इन लाइक 4 मंथ्स व्हेन ही वाज ऑन डायलिसिस, हमने 4 महीने के अंदर ऑर्गन डोनेशन का पूरा डिसीजन ले लिया था।
1: एंड डायलिसिस के अलावा मतलब ट्रांसप्लांट में 2 ऑप्शंस होते हैं, बेसिकली लिविंग ऑर्गन डोनेशन एंड डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे आपने ऑप्शंस का चुनाव किया। तो जल्दी हम इस अंतराल के बाद वापस आएंगे और अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे।
2: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
3: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है, हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि जिंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे मुद्रिका से ब्रेक में जाने से पहले और ब्रेक के बाद अब हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक में जाने से पहले हमने जाना कि किस तरह से प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई और किस तरह से कंक्लूजन निकला कि किडनी ट्रांसप्लांट ही सबसे उचित उपाय है इसका, इस सिचुएशन का। तो मुद्रिका जी, हम बात कर रहे थे कि कैसे चुनाव किया ऑप्शन का।
2: बिल्कुल।
1: तो आमतौर पर दो ऑप्शंस होते हैं, लिविंग ऑर्गन डोनेशन एंड डिसीज ऑर्गन डोनेशन। तो आपने डिसीज के लिए ट्राई नहीं किया, सीधा लिविंग पर?
2: नहीं नहीं, हमने डिसीज के लिए किया था, जो जैसे डिसीज का होता है, ब्रेन डेड बॉडीज होती है, कैडेवर कहते हैं उसको। बिल्कुल, हम लोगों ने उसके लिए ट्राई किया था। जयपुर के हॉस्पिटल में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब प्रोसेस पता किया था, हमने रजिस्टर किया था। बट यू नो, उसके बारे में भी हमने पता किया कि हाउ थिंग्स हैपन। लेकिन इतना इजीली आपको ब्रेन डेड बॉडी आना आपके लिए और वो आपके मैच करना किडनी, फिर वो आपको बुलाएंगे, फिर वो टेस्ट करेंगे, यू नो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। लकीली कुछ लोगों को एक महीने में मिल जाता है और कुछ लोगों को एक या दो साल में भी नहीं मिल पाता है।
1: बिल्कुल।
2: सो दिस इज, ये हमारा एक और रीजन था जहाँ हमने बोला था कि हम ये मोनोटोनस लाइफ नहीं देना चाहते। प्लस कैडेवर में अगर एक साल लग गया तो हम नहीं, यू नो वी वोंट बी एबल टू हैंडल, बिकॉज एवरीवन इज वर्किंग, सबका अपना टाइम होता है और हम इस तरीके से नहीं उसको स्पेंड करना चाहते थे इन द हॉस्पिटल। तो वी वेंट फॉर लिविंग। एंड सी, अगर आप मेरा पूछें तो मेरा तो स्टार्टिंग से यही था दैट ही इज माय फादर एंड आई हैव टू डू इट। मैंने कभी किसी और से रिलेटेड बात सोची ही नहीं, मतलब कोई और रिलेटिव के बारे में मैंने और मेरी बहन ने कभी सोचा ही नहीं। जब आया था डोनेशन का, मैं और मेरी बहन तब भी रेडी थे कि हम ही करेंगे, बट ऑफकोर्स पेरेंट्स का थोड़ा सा
1: यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब भी कोई अनमैरिड गर्ल डोनेट करने की बात करती है तो सबसे पहले जो डिनायल आता है वो खुद डोनर या फैमिली मेंबर या डॉक्टर की तरफ से नहीं आता, वो सिर्फ वो रिसिपिएंट की तरफ से आता है कि नहीं बेटी से तो बिल्कुल नहीं लेंगे।
2: बिल्कुल,
1: आता है कि नहीं बेटी से तो बिल्कुल नहीं लेंगे।
2: बिल्कुल,
1: आपकी सिचुएशन में ये कैसे था और कैसे इस चीज पर को ओवरकम किया आपने, कैसे कन्विंस किया?
2: मेरी मदर थोड़ा सा, ऑफकोर्स जैसे आपने कहा अनमैरिड लड़की, आई वॉज अनमैरिड एंड 25 आई थिंक मेरी एज थी 2018 में। एंड मम्मा बहुत ज्यादा डरी हुई थी बिकॉज हम राजस्थान से हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ पे शादियाँ किस मतलब जल्दी हो जाना और लड़की की शादी होना, सब चीजें मैटर करती हैं। तो मम्मा वॉज कंसर्न, उन्होंने इस बारे में डिस्कशन करी थी। मम्मी खुद नहीं दे सकती क्योंकि वो खुद भी बीपी और डायबिटीज है उनको। और जैसे अगर हम बात करें मेरे बुआ की, तो बुआ का ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता, चाचा का ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो एट द एंड मैंने कन्विंस सबसे ज्यादा अपनी मॉम को सिर्फ एक ही चीज बोल के किया था। मेरी मॉम अपने पापा से बहुत अटैच्ड है, जैसे मैं मेरे नाना से, वो अपने पापा से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। तो द ओनली थिंग दैट आई टोल्ड हर वॉज कि अगर आपके पापा के साथ होता, व्हाट वुड यू हैव डन? राइट, मतलब जब हम उनसे वो सवाल पूछते हैं ना कि आप उन सिचुएशन में होते तो क्या करते, तो दैट वॉज द टाइम वो आंसर नहीं कर पाई। तो वो मेरे लिए फायदा हो गया देखा जाए तो। और डिनाइल पेरेंट्स का था, प्लस डिनाइल मेरे सारे डॉक्टर्स का भी था अगर देखा जाए तो। देवर ऑल्सो कंसर्न क्योंकि मैं राजस्थान से आई, ऑपरेशन अपोलो में करवाया अहमदाबाद
1: जी।
2: और ऑफकोर्स वो डरे हुए थे, 25 ईयर ओल्ड अनमैरिड, देवर ऑल्सो नॉट कन्विंस्ड। उन्होंने बहुत कोशिश करी मुझे समझाने की कि मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, एंड मैंने उन्हें समझाने की कि मैं ही करूंगी। तो दिस ऑल्सो टुक अ लॉट ऑफ टाइम।
1: ओके, तो ये तो हो गया दूसरे लोगों के डिनाइल का। कई बार जो डोनर होता है, ठीक है आप बोल तो रहे हैं कि आप करिए, लेकिन अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी शंकाएं होती हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो आपके मन के अंदर अगर जाहिरने की कोशिश करें तो उस टाइम आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी, इन चीजों को लेकर क्या शंकाएं आपके मन में थी? बिकॉज जब आप ये चीजें शेयर करते हैं ना, तो हमारे जो दूसरे श्रोतागण रहते हैं जो सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं, उनको बहुत हेल्प मिलती है इन सब चीजों पे। कई बार सेम शंकाएं, सेम डाउट्स उनके मन में भी होते हैं और उनको आंसर नहीं मिल रहे होते और हर चीज कोई कह भी नहीं पाता।
2: आई एग्री सरल जी, ट्रस्ट मी। मैं एक तरीके से अपने आप को, वो कहते हैं ना चोजन वन, क्योंकि इट्स नॉट आई अंडरस्टैंड कि वो मेरे पापा हैं, कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल फीलिंग होती है. बट अगर आप मेरे को पर्सनल लाइफ में भी देखो, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ. आई नो व्हाट टू डू. अगर मेरे पास फैक्ट्स है, मेरे पास चीजें हैं, तो आई डू द थिंग्स. मैं नॉर्मली भी ऐसी ही हूँ. और जब इस सिचुएशन में एक मौका आया था, तो ऐसा कहते हैं ना कि हम अपने पेरेंट्स को वी वॉन्ट टू गिव एवरी थिंग, वी कैनॉट रीपे देयर डीड जो वो हमारे लिए करते हैं. तो आप इसको देख लो, शायद सेल्फिश थी. मुझे लगा एक मौका मिल रहा है पेरेंट्स को कुछ वापस देने का, दिस वॉज माई चांस, और मैंने छोड़ा नहीं. मैं बिल्कुल भी डरी भी नहीं थी. मेरा डर, अगर आप वर्ड यूज करना चाहें तो डर, सिर्फ मैंने डॉक्टर से शायद एक सवाल पूछा था कि सर, बिकॉज आई वॉज यंग, तो थोड़ा एक बात नहीं है अगर देखे तो. मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि सर, ऑपरेशन होने से पहले मेरे को तो बेहोश करेंगे ना, विच वॉज स्टूपिड. मतलब मुझे पता है कि बहुत स्टूपिड सवाल था, बट एक कहीं ना कहीं मजाक था. मैंने कहा सर, मुझे पता नहीं चलना चाहिए, बाकी आप कुछ भी करो. तो यू नो आई वॉज पॉजिटिव, क्योंकि एट दी एंड वो मेरे ही पापा हैं, डीएनए हमारा मैच कर रहा है, चीजें हमारी मैच करती है. तो मैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव थी, और मैं बहुत चीजें पढ़ चुकी, तो कहीं डाउट नहीं था.
1: एंड कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन रिश्तेदारों की तरफ से कि ये क्या करने जा रहे हो, और ऐसा कुछ नहीं था. मतलब नॉट जस्ट बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ अनमैरिड गर्ल, इस जस्ट ये जनरल लोगों को भी बोला जाता है कि आप अपनी किडनी डोनेट कर रहे हो, आपकी खुद की तबीयत खराब हो जाएगी, ये वो सारी चीजें. कभी ऐसी कोई चीज रिश्तेदारों की तरफ से सुनाई पड़ी हो, जिन लोगों को जानकारी नहीं रहती, वो अक्सर बोलते हैं.
2: बिल्कुल बिल्कुल. नहीं सर, कहते ना कि कभी किसी को ज्यादा चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए, नजर लग जाती है.
1: जी.
2: सो व्हाट हैपेंड वाज, जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे ऑपरेशन वगैरह के लिए, तब हमारा एक बार ऑपरेशन कैंसिल हुआ था, क्योंकि शायद पापा का वापस क्रिएटिनिन बढ़ गया था और उनके पैर में स्वेलिंग आ गई थी. तो हमें ऐसा लगा कि शायद हम लोगों ने किसी को ऐसा बताया है जो ऐसा नहीं चाहते, या वो नजर लगने वाला. तो द नेक्स्ट टाइम जब हमारा ऑपरेशन एक्चुअली नेक्स्ट डेट हमें मिली थी, हम लोग एक बार अहमदाबाद छोड़ के जोधपुर आ गए थे, हफ्ते भर के लिए घर रहे थे. नेक्स्ट टाइम हमने किसी को बताया ही नहीं. वी वेंट, हम ही चार पांच जने थे, मेरी फैमिली के अलावा भी वहाँ का दो जने और थे. हम ही वहाँ पहुंचे, वी हैड एवरीथिंग सॉर्टेड, हमारा कब होने वाला है ऑपरेशन सब कुछ सॉर्टेड था. तो अगर आप रिस्ट्रिक्शंस की बात करें रिलेटिव से, मैं ऐसी हूँ कि मुझे मेरे लिए, अगर मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन, इफ दे आर कन्विंस, या फिर हम चारों ही एक्चुअली ऐसे हैं, अगर हम चारों किसी चीज को लेके कन्विंस हैं, तो हमको फर्क नहीं पड़ता और क्या बोलते हैं. बिकॉज वो हमारे लिए, ऐसा तो नहीं है ना हर सिचुएशन में आपको लगता है कि रिलेटिव आते हैं साथ में, वो खड़े होते हैं. नहीं, एट दी एंड हम चार ही एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, इन द गुड टाइम्स एंड इन द बैड टाइम्स. तो हमारे लिए हमेशा से वही था कि जो है हम ही है, वील डू इट. अगर कोई ऑफकोर्स साथ में आएगा, मोस्ट वेलकम, बट हम एंटरटेन नहीं करेंगे नेगेटिव थॉट्स हमारी लाइफ में. पहले से ही ये क्लियर मैंने और मेरी बहन ने मम्मी को कर दिया था, बिकॉज मदर थोड़ा ज्यादा डरती है. तो हम दोनों ने मम्मी को ये जरूर क्लियर कर दिया था दैट आप थोड़ा रिलैक्स रहो, थिंग्स विल बी डन. अगर सुनोगे तो लोग सुनाएंगे.
1: बिल्कुल. तो कुछ अगर प्रैक्टिकल बातों के बारे में बात करें, तो जैसे कि आपने बोला कि आपने अहमदाबाद में जाकर ट्रांसप्लांट करवाया था, तो जोधपुर से अहमदाबाद मूव करना, तो किन किन चीजों की आपको अरेंजमेंट करने पड़े, कैसा क्या सिस्टम था? मतलब क्योंकि हॉस्पिटल का पार्ट तो हॉस्पिटल प्ले कर लेता है, हॉस्पिटल के अरेंजमेंट हॉस्पिटल में कर लेते हैं, उनके पूरे प्लानिंग रहती है इन चीजों की, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो मैनेज करनी पड़ती है. तो वो सब क्या क्या थी, क्योंकि ये सब जानकारी जो आप बताएंगे वो पेशेंट्स को हेल्प करेंगे.
2: राइट राइट. सर, जैसे हम लोग रेलवे से हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं रेलवे से जो अफिलिएशन है, तो पहले हम लोगों ने प्रोसेस ये देखा था कि रेलवे का अफिलिएशन किस किस हॉस्पिटल्स में होता है. उसमें से हम लोगों के पास अहमदाबाद का अपोलो और आई गेस अहमदाबाद का एक और हॉस्पिटल था, नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, ये दो नाम थे. एक हमारे पास नडियाद था, ये जो बड़े बड़े नाम, क्योंकि नडियाद आप जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल. एग्जैक्टली. तो ये नाम हमारे लिस्ट में काफी जनों ने बताए थे और ये रेलवे से अफिलिएटेड भी थे, तो हमें इस चीज का फायदा था. जब हम नडियाद गए थे, तो हमारा जो रहने वगैरह का था, जिन्होंने पहले करवा रखा था, उनसे हमने पूछा था, तो उन्होंने हमें बताया था कि नडियाद के पास में फ्लैट मिलते हैं. क्योंकि हॉस्पिटल, जैसे आपने कहा, हॉस्पिटल तो अपना पार्ट करेगा, हमें क्या करना था, हमें वहां का रहना, खाना पीना, वो सब एट दी एंड देखना था। तो नडियाद में और अहमदाबाद में वी वर एक्चुअली प्लानिंग कि हम लोग फ्लैट वगैरह लेके रह सकते हैं और अपना सामान ले जाएंगे, खाना वहां से। हम लोग कम्यूट देख रहे थे कि एक हॉस्पिटल से हमें कितने एरिया में हम फ्लैट ढूंढ सकते हैं या रह सकते हैं और कि हमें आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। हम जोधपुर से अपनी कार लेके गए थे ताकि ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हमें लोकल कम्युनिकेशन यूज ना करना पड़े, कभी कोई काम पड़े तो एनी टाइम हम कार लेके जा सकें। तो हमारी प्लानिंग इस हिसाब से हुई थी कि हमने पुराने लोगों से थोड़ी बात करने की कोशिश करी, थ्रू डॉक्टर्स, थ्रू अदर पेशेंट, के वो कैसे रहे थे, उन्होंने कौन सा फ्लैट लिया था। नडियाद के पास में जैसे एक बिल्डिंग है, जैसे जो वहाँ के घर हैं आसपास वाले वो भी देते हैं, उनको भी पता है ना हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन के लिए आते हैं, तो वो भी अपना घर एक दो रूम दे देते हैं रेंट पे। तो ये पूरा हमारा एक प्रोसेस था।

0: लकीली हमें एक रिलेटिव का जब उन्हें पता चला तो उनका डायरेक्टली हमारे पास फोन आया था और उन्होंने बोला अहमदाबाद में मेरा एक फ्लैट है वो खाली पड़ा है, आपको रहना है, आप जो भी काम करवाना है वी अंडरस्टैंड, तो आप ये फ्लैट रख लो. तो वी गॉट दैट फ्लैट. जैसा मैंने कहा कि हम कार तो लेके ही गए थे और कम्युनिकेशन हमारा हो गया था कार से, और अपोलो से उनका घर वॉज 7 मिनट्स.
1: ठीक है,
0: तो हमारा ये फायदा हुआ था और फाइनल डिसीजन अपोलो इसलिए हुआ था.
1: तो कितने कितने महीने पहले से शिफ्ट हो गए आप वहाँ, और ऑपरेशन के कितने दिन तक, कितने टाइम तक वहाँ रहना पड़ा, ये सब चीजें भी थोड़ी सी डिटेल में बताइए.
0: बिल्कुल, जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ था जुलाई 7 जुलाई को हुआ था ऑपरेशन, और जहाँ तक मुझे याद है मिड ऑफ अप्रैल. रीजन बीइंग जो डॉक्टर थे उन्होंने ये बोला था कि टेस्ट होंगे मेरे फादर के, मतलब एक सीरीज ऑफ टेस्ट होता है आपके, है ना, बॉडी का एक एक पार्ट लिटरली वो लोग चेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चाहे वो एक डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट हो. क्यों? बिकॉज आई एम अ गर्ल, तो मेरे जो वो लेडीज प्रॉब्लम से लेकर और भी जो टेस्ट होते हैं, आपके साइकाइट्रिक टेस्ट भी किए जाते हैं कि आप मेंटली कितने फिट हो टू डोनेट एंड रेसिपियंट के भी. सो देवर आर सीरीज ऑफ टेस्ट विच वर गोइंग टू हैपन. अब उन टेस्ट में हमें आप देख लीजिए लगे थे कम से कम एक या सवा महीना. हम लोग आई गेस अप्रैल मिड में चले गए थे और एक सवा महीना हम लोगों को लगा था इस पूरे टेस्ट में, मेरे और मेरे फादर के दोनों के. तो एवरी डे हम लोग सुबह पहुंचते थे 9-10 बजे तक, डॉक्टर्स हमें टेस्ट लिखते थे, हम उन लोकेशन पर जाके टेस्ट करवाते थे, तो शाम तक फ्री होते थे, फिर वापस घर आते थे और नेक्स्ट डे द सेम रूटीन. तो ये कम से कम हमारा 1-1.5 महीने तक चला था. फिर उसके बाद एक पार्ट आता है जहाँ पे आप जो डॉक्टर्स ऑपरेशन करने आते हैं, तो जो मेरे लिए आ रहे थे डोनर, बिकॉज वही है यंग लड़की थी, तो जो मेरे लिए आ रहे थे वो नडियाद से आ रहे थे.
1: okay.
0: महेश, डॉक्टर महेश देसाई, वो मेरे लिए ऑपरेशन में, तो मेरा लेप्रोस्कोपी होने वाला था. मेरे डॉक्टर मनोज गुंबर ने कहा था कि मैं इनका कट वगैरह नहीं लगाऊंगा, मैं लेप्रोस्कोपी ही सजेस्ट करूंगा फॉर अ गर्ल. तो उसके लिए महेश देसाई सर आने वाले थे, तो उनकी पूरी टीम से भी हम लोग मिले थे. उनके जितने टीम में डॉक्टर्स होते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज उनको एक एक जने से कंसल्ट करना होता है. इवन वो भी हमारी रिपोर्ट देखते हैं, वो हमारे सीटी स्कैन देखते हैं, बॉडी का फुल सीटी स्कैन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज एट द एंड वो सर्जरी करेंगे. दे विल गेट टू नो कि उन्हें कहाँ कहाँ कट लगाना है, क्या निकालना है, क्या इश्यूज आ रहे हैं. तो मैं उनकी टीम के भी तीनों चारों डॉक्टर्स से मिली थी. मैंने महेश सर को भी खूब रिक्वेस्ट करके मनाया है देखा जाए तो मेरे ऑपरेशन के लिए, बिकॉज वो भी थोड़ा सा रेसिस्टेंट थे. तो इट टुक अबाउट 2 मंथ्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर द एंटायर प्रोसेस.
1: तो ठीक है मुदिका जी, यहाँ पर हम फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे.

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे मुज्जिका जी से और ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं अपने इस कार्यक्रम में। तो चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुज्जिका जी, हमने बहुत सारी बातें जानी, एक और सवाल है मेरा आपसे कि जैसे पेपर वर्क, तो लिविंग ऑर्गन डोनेशन में पेपर वर्क बहुत सारा होता है एंड चूंकि आपका तो स्टेट से बाहर जाकर आपने ट्रांसप्लांट करवाया, आपको तो शायद एक्स्ट्रा पेपर वर्क करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इनके बारे में बताइए, क्या क्या पेपर वर्क, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको अरेंज करना पड़ा, कहाँ पे क्या दिक्कत आई, करीब कितना टाइम लगा इन सब चीजों में।
2: जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2 महीने अहमदाबाद रही थी टेस्ट के लिए, उससे पहले ही हमने डॉक्टर्स से पूरे क्या कहते हैं जो वहाँ के एमआर होते हैं उनसे हम लोगों ने पूरा लिस्ट ले ली थी कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए होगी, बिकॉज हम लोग राजस्थान के रेसिडेंट हैं और हमें यू नो अहमदाबाद आके वो करवाना है। तो आपके आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं कि भाई मैं उनकी डॉटर हूँ, एक तो वो वाला प्रूफ भी हो जाता है जहाँ पे फादर डॉटर रिलेशन प्रूफ करना होता है, आपके आधार कार्ड वगैरह तो बहुत नॉर्मल चीजें होती हैं, वो तो हर जगह होता है, फिर आपका डोमिसाइल होता है that you are resident of that place, फिर आपके पुलिस वेरिफिकेशन भी होते हैं टू प्रूव दैट आप वहीं रहते हैं एंड मतलब आप उसी जगह के रेसिडेंट हैं, तो एक पुलिस के भी सिग्नेचर्स होते हैं। और इनमें मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे आती है डोमिसाइल वगैरह में, जब आपको कोर्ट जाके एक्चुअली वो पेपर पूरा प्रिंट करवाना पड़ता है दैट हम लोग यहाँ पे रहते हैं, और वो क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट लॉयर्स के सिग्नेचर्स होना, उनके स्टैम्प लगना और उन्हें पूरी सिचुएशन बताना, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे दैट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अहमदाबाद में, और हमें डॉक्यूमेंट में ये भी सबमिट करना था कि हम लोग अहमदाबाद क्यों जाना चाहते हैं, यू नो हमारी भी एक एप्लीकेशन थी कि हम राजस्थान में क्यों नहीं करवा रहे, हम अहमदाबाद क्यों जा रहे हैं। हमें रेलवे से एक अप्रूवल चाहिए था इन अ मैनर के रेलवे क्यों राजस्थान में ऐसा मतलब अब हॉस्पिटल नहीं है और हम रेलवे के थ्रू ही अहमदाबाद जा रहे हैं, तो वो रेलवे का अप्रूवल भी था, जो रेलवे के हेड थे उनसे हमारा एप्लीकेशन के ऊपर सिग्नेचर था।
1: कई बार मैंने लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि जब हम अधिकारियों से बात करने जाते हैं तो उनको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं होता।
2: जी
1: तो
2: जी,
1: आपको जीरो से उनको पहले शुरू से समझाना पड़ता है कि नहीं आपके ही सिग्नेचर की जरूरत है एंड आपको ही करने पड़ेंगे एंड देन क्या होता है क्यों होता है।
2: राइट मैं रेलवे में तो ये नहीं कहूंगी कि अधिकारियों को नहीं पता होता, क्योंकि क्या होता है रेलवे का वो जो पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं उसके अंदर जब वो हमें रिफंड देते हैं या वो वहां से हमारा क्या एज एन जो चेक अप्रूव वगैरह करवाते हैं उनमें उनके स्टेट मतलब लिखे हुए होते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों को दे सपोर्ट। राइट तो एग्जैक्टली मुझे रेलवे के अधिकारियों को शायद इतना नहीं समझाना पड़ रहा था, बट उनको ये चीज समझानी पड़ रही थी कि एट दी एंड मतलब मेरे डैड को ये समझाना पड़ रहा था कि मेरी डॉटर करेगी, तो यू हैव टू बी लाइक उनको ये कन्विंस करना भी इम्पोर्टेंट था कि क्यों आपकी डॉटर कर रही है कहीं और, जैसे आपने कहा कैडेवर, तो रेलवे कैडेवर भी करता है आप स्पॉन्सर बोल लो या रेलवे से रेफरल करवा लो, तो वो कैडेवर वो भी करते हैं, तो वो चीजें समझाना मुश्किल हो रहा था। तो मेरे लिए पेपर वर्क में किडनी ट्रांसप्लांट से ज्यादा समझाना ये मुश्किल हो रहा था कि व्हाई इज योर डॉटर गिविंग इट, आप क्यों नहीं वेट करना चाहते, तो वो क्वेश्चंस मेरे ऊपर ज्यादा थे।
1: तो सब चीजें हो गई, सब ट्रांसप्लांट हो गया, अब आपके फादर और आपकी हेल्थ कैसी है, कभी आपको ऐसा लगा कि किडनी डोनेशन की वजह से आपको कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो?
2: नहीं सर, मैं हेल्थ प्रॉब्लम की अगर आप बात करें तो नहीं, किडनी डोनेशन की वजह से कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी नहीं है टचवुड, ना मेरे फादर को है ना मुझे है। हम लोग वी स्टार्टेड विद जिम, लेकिन जिमिंग का थोड़ा वेट्स वगैरह यू कैन नॉट, तो हम लोगों ने बेसिक जिमिंग भी स्टार्ट करी, हम आज तक मेरे डैड वॉक करते हैं, और मैं मेरा थोड़ा सा वेट को लेके था, आई थिंक आई गेन्ड अ लिटिल वेट पोस्ट द ट्रांसप्लांट, और इसका रीजन भी यही है कि मेरी मॉम बहुत प्रोटेक्टिव हो गई थी, तो उन्होंने 6 महीने तक मुझे कहीं जाने नहीं दिया, घर पे बैठा आराम करना वगैरह, आप मतलब ऐसा हो ही जाता है कि उस ऑपरेशन हुआ है रेस्ट करना चाहिए, तो वो रेस्ट के चक्कर में आई गेस आई गेन सम वेट, बट अभी एट प्रेजेंट मैंने अपनी जॉब भी वैसे 6 महीने में ज्वाइन कर ली थी, मेरे फादर ने भी आई गेस 8 महीने में जॉब ज्वाइन कर ली थी, तो अभी वी आर इन अ वेरी गुड स्टेट। एक नॉर्मल सी चीज है कि हेल्दी लाइफ के लिए जो डाइट बताई गई है आप थोड़ा बहुत अगर उस पर ध्यान दो, बाहर का खाना थोड़ा कम, जैसे अगर हम लोग बाहर घूमने भी जाते हैं, हम लोग डॉक्टर की परमिशन से जब पहली बार ऑपरेशन के बाद बाहर घूमने गए थे तो हम लोग मोस्टली मेरे डैड का सारा सामान खाने का हम लोग साथ लेके गए थे कि उनके लिए क्या क्या चीजें होगी। इवन वी टुक एन इंडक्शन के खाना हम घर पे बनाएंगे, सामान ले लेंगे और घर पे खाना बना सकते हैं, जहाँ आप रूम में रुक रहे हो, जहाँ आप फार्म हाउस में रुक रहे हो। तो हम आज तक वो चीजें फॉलो करते हैं कि कहीं भी जाना हो वो ये प्रेफर कि मेरे फादर के जो चीजें हैं खाने वगैरह की वो हम साथ लेके चलें और खुद बनाएं रेदर देन वो बाहर खाएं।
1: ओके, तो कंक्लूड करते हैं, अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप कोई मैसेज देना चाहते हो समाज को अंगदान के ऊपर, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें?
2: मेरा बेसिक चीज यही होती है कि जब अपने लोगों को अपनी जरूरत होती है, द फैमिली जो हमारे लिए स्टार्टिंग से खड़ी होती है हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए, तो वी शुड ऑलवेज बी देयर। मतलब मैं ये सिर्फ बात अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कह रही हूँ कि भाई एक बच्चे को अपने माँ बाप के लिए करना चाहिए, आई वुड से फैमिली में कोई भी हो सकता है, भाई बहन, मम्मी पापा, बेटी बेटा। माई कंसर्न इज क्यों हमें किसी और की जरूरत पड़े, क्यों हम एक कैडेवर का वेट करें, क्यों हम एक दूसरे इंसान का वेट करें अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो स्टार्टिंग से मेरा डोनर होके सबसे बड़ी चीज यही रही है, अगर मैंने किसी से बात भी करी है तो मैंने उन्हें ये कन्विंस किया है कि ये आपकी फैमिली का मैटर है, राइट? सो यू हैव टू बी सपोर्टिव इनफ कि आप थोड़ी सी हिम्मत कर लो, बिकॉज ट्रस्ट मी डोनर को कुछ नहीं होता है। लाइक इफ यू आर हेल्दी, मतलब ऑब्वियसली अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं काम वो अलग बात है, आप पर्सनली अपने आप को कुछ गलत चीजों की वजह से हेल्थ को खराब कर रहे हैं तो उसमें मैं नहीं बोल रही, बट एक नॉर्मल ऑपरेशन और एक नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू डोनर इतना इफेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट यू एक्चुअली प्रोवाइड लाइफ टू योर फैमिली मेंबर। तो आई गेस दिस इज इट दैट यू हैव टू सपोर्ट, यू हैव टू बी विद योर फैमिली, ताकि वो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फैमिली वालों का ही किडनी या कोई भी चीज है ना मैच भी ज्यादा करती, तो दे विल हैव अ बेटर लाइफ। वो 5 साल की एक्स्ट्रा लाइफ भी ना बहुत मायने रखती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एक डोनर और रेसिपिएंट से मिला हूँ जिनका जिन्होंने अपने भाई को 45 इयर्स पहले किडनी दी थी, वो राजस्थान से मिली थी।
2: बिल्कुल, जयपुर हनुमानगढ़ वाला है जी, मैं कनेक्टेड हूँ काफी ऑर्गन डोनेशन उनसे, तो जाते रहते हैं हम भी अटेंड करने के लिए।
1: बिल्कुल मधुरिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इतना समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। थैंक यू मधुरिका, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच।
1: श्रोता मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आपको मौका मिले, चाहे वो अपनी फैमिली के बाहर हो, अगर फैमिली में, मैं तो आशा करूंगा कि फैमिली में किसी को जरूरत ही ना पड़े एंड आप अपनी लाइफ आराम से जियो, लेकिन जाने के बाद भी अंगदान करके जाएं और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां आप बचा सकते हैं इसके थ्रू। एंड ट्रस्ट मी, जब आप एक जिंदगी बचाते हो तो बहुत सुकून मिलता है इस चीज में। यहीं पर हम विदा लेते हैं, अगले शो में हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए शख्सियत के साथ और उनकी कहानी जानेंगे। धन्यवाद।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चहु ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।

0: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर
1: मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताज़ा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के 2रे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये 4थी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
1: अप्पा अप्पा ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
1: अप्पा ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

चलसे सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप

0: हाँ पायो से
1: हेलो
0: हे hey, तुम कब आए?
1: जैसे चौकन्ना रहिए
0: याद रखना यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना। ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
2: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है। ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
3: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
4: मामा, नो शेयरिंग।
3: कोई स्पेशल हा? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
4: कौन था?
3: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
4: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
3: स्मार्ट गर्ल।
4: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
3: याद है ना, नो शेयरिंग।
4: मामा,
5: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
6: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
7: शादी से पहले वाली
6: हाँ?
7: भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

0: दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आज ही रोज रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।
1: Mixing in the house.

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों 91.9 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो रंजन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

0: क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: 这是
1: 张开呢
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो अभी तो सड़क खाली लग रही है पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे
2: हेलो
0: हे तुम खबर है
2: जैसे चौकन्ना रहिए
0: याद रखना यहां हर पल चौकन्ना है रहना ये सड़क है भैया संभल के चलना
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया पर गलत होता देखना भी अपराध है ये समझ किसी को आता कहाँ है कृष्ण आते हैं समझाने आज भी बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है
4: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है
5: मामा नो शेयरिंग
4: कोई स्पेशल हाँ हाँ बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए
5: कौन था
4: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर पिन और ओटीपी मांगा है
5: और आप मान गए जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे
4: स्मार्ट गर्ल
5: याद रहे मामा डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें
4: याद है ना नो शेयरिंग
5: मामा
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ
7: सुनो एक बात बताओ शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली
8: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो जिंदगी तो शादी के बाद होती है बीवी के साथ रोटियां बनवाओ खाना बनवाओ

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम लेके माटी दी महक तां श्रोताओं कर दिन कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कने तोहां सारे ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने बंदी

रेडियो गुंजन धर्मशाला तेने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक आशोताओं बढ़ देने कार्यक्रम जग गए तेने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तोहां सारियां ट्यून कित्ते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चले है माटी दी महक श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 MHz पर तो हाँ सारे ट्यून कित्ते है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि करने तो श्रोताओं बढ़ देन कार्यक्रम चगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

रेडियो गुंजन धर्मशाला इन्हें तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक आशोतों बढ़ देना कार्यक्रम जग गए इन्हें सुन देनी कोर प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तुहां सारिआं ट्यून कीते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चलिआ है माटी दी महक। श्रोताओं सुनदे ने इक और प्यारा दिया गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैंने तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना माटी भी महक। तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला दे न रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तोहां सारियां ट्यून कित्ते आए अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चले आए माटी दी महक श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहां सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहां सारे कार्यक्रम सुनांदे थे माटी दी महक। कहां श्रोताओ अज कने कार्यक्रम च बस इतना ही, तो तोहां सारे ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा, बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: चसे
1: चकना।
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: hey, तुम खबाए
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मांग गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
7: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
8: शादी से पहले वाली
7: हाँ?
8: भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: नाना।
0: सुनो तो सुनो तो
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए,

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप
1: मुस्कुराई। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं।

0: आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: पापा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: पापा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूंछें क्यों नहीं होती? पापा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? पापा, पापा, बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
3: लो घर जा।
1: पापा, पापा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
4: अरे इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
5: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
4: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अब्बा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
4: हाँ पक्का।
1: अब्बा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
6: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
7: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: से
1: चौक करना।
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: hey, तुम खबर है?
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
7: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
8: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी,
9: सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

0: नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रो रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर बचुको कार्यक्रम लेकर हिंदी अपनी गपा। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा, सभी श्रोतागण रहा। क्या हाल चाल है श्रोतो तुंदे? उम्मीद करनो तुंदे हाल चाल को बिल्कुल फिट एंड फाइन बुने, तो सब बिल्कुल खरे बुने, अपने घर हस्त पुष्ट और तंदुरुस्त बुने और अपने घर किया सो मज़े में बुने। इन श्रोतों मज़े में रहना भी ज़रूरी है, जिंदगी व्यतीत करने श्रोतों तो हंसते खेलते रहना अक्सर बोलना बहुत ज़रूरी है ना। कामकार भी बहुत ज़रूरी है और हंसते खेलते रहना भी ज़रूरी है। श्रोतों नमस्ते, हक मौके फिर सभी जो तो है इस कार्यक्रम में जुड़ी सकते हैं 708-8-709 पर तो है कॉल करके अपना पसंदीदा गीत किया सो होने सकते हैं और अपने क्षेत्र जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं। श्रोताओं नंबर आख मौके फिर हम रिपीट कर लो हाँ, 708-8-709 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो जरूर होने सकते हैं। श्रोताओं बहरहाल इन श्रोतागण असूगी कनेक्टेड हैं, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा धूप किया सो धर्मशाला में भूई है श्रोतों। हालांकि मौसम विभाग री और तो अगर है मनिए तो मौसम विभाग ये बल्लो कर दो कि आज की सो बरखा बूनी है, मतलब बरखा रहा सार के न सो आज हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना, आज बरखा बिल्कुल भी ना थी श्रोतों, बिल्कुल भी ना हुई, इवन की धूप किया सो खासी हुई है। बहरहाल इन श्रोतागण सो की कनेक्टेड हैं, पुछ दिन कौन बल्लु दिन और कड़ी तो नमस्ते जी।
1: नमस्कार जी, नमस्कार, ठीक ठाक जी?
0: बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
1: और
0: जी कौन बल्लू देन और कड़ी थो बल्लू देन?
1: वो ताराचंद बल्लू का था गाइड थो।
0: अच्छा अच्छा, ताराचंद जी, ताराचंद जी क्या हालचाल? ठीक ठाक?
1: ठीक ठाक है, पर गर्मी बड़ी पड़ी गर्मी है,
0: बहुत ज्यादा गर्मी आज, काफी ज्यादा भोए गर्मी है ना जी,
1: बड़ी गर्मी पड़ी गर्मी। हां बरखा रे सार है ना जी,
0: रेवा जी दसो तो कर दे थी, लेकिन हिन ना नीन हालांकि दसो कर दे थी कि बोने आज बरखा पर बोने
1: आज ना तो गर्मी बड़ी है, बाल निकल कर ना ना बड़ भारी
0: बड़ा बड़ा बड़ा ज्यादा। चलिए ठीक है जी, कुंदन की थोड़ा पसंद कर ले
1: जी, तू ना गोड़क चमक बाहुआ,
0: गोड़क चमक बाहुआ मेगा हो।
1: हाँ मेगा बाहुआ मेगा हो।
0: चला ठीक है जी, जरूर
1: होने ले, धन्यवाद जी,
0: जरूर होने ले, धन्यवाद जी, धन्यवाद। इंदे और भी श्रोता के अनुसार होगी बिल्कुल कॉल करूँ कर दिन और जरूर जी सभी जो पता कि चूर बजे के सो अपना गादा कार्यक्रम चले बंदा चूर थो पंजे कार्यक्रम चलता है और इस कार्यक्रम रा आनंद है सब लिंदे हिन और इसी सोगी सोगी सब अपने मंदो मनो के न सो इस कार्यक्रम रा आनंद लिंदे हिन। बहरहाल इंदे अगले श्रोता सोगी कनेक्टेड हिन, नमस्ते जी।
2: नमस्ते, हूँ पुरुषोत्तम कुमार भद्रवा थम बली रिव रहे।
0: क्या बात है, क्या बात है,
2: डोडा जिला। और सुना क्या हाल चाल है?
0: बहुत बढ़िया, डोडा जिला जम्मू कश्मीर। इंदे बड़े पुराने तो है श्रोतागण और बड़ी दूर तो जुड़ते हैं असोगे।
2: हाँ जी हाँ जी, और सुना क्या हाल चाल है?
0: बस जी, तू दसा क्या हाल चाल है? मौसम रोड़ी
2: बस ठीक ठाक, मौसम ठंडा ठंडा बड़न दे मजा आज।
0: अच्छा ठंडा मौसम है,
2: ठंडा ठंडा मौसम है,
0: क्या बात है। बरखा बोया?
2: हाँ बोई थोड़ी थोड़ी।
0: अच्छा बोया?
2: हाँ
0: क्या बात है,
2: नजारे नजारे बुझ गए थे
0: हैं।
2: और
0: क्या बात है, तो है जीवंत है जिंदगी था।
2: तो बड़े नजारे वही गल आई।
0: लगभग तो है मुझे लगता है 2300 किलोमीटर सुधो दूर इन 360-365 है बीच किलोमीटर तो है दूर न सु डोडा से लगे जम्मू कश्मीर तो मतलब धर्मशाला के आसो 365 किलोमीटर दूर है लगभग 65 है बीच।
2: अच्छा अच्छा, तो जम्मू से भद्रवाह 100 किलोमीटर दूर है।
0: हाँ जी
2: बड़ा लंबा सफर है,
0: बड़ा लंबा। 8 9 घंटे लगन दा टैक्सी अंदर है। हाँ
2: अजकल तो बड़ा स्पेशल जमाना है,
0: जी
2: अपनी अपनी गाड़ी रखो लोग चली जाते मजे से।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
2: वक्त सो बदली गो
0: बदली गो
2: बड़ी चेंजिंग चली आए रेल दे गड्डी में गल ना कर दे
0: ना।
2: जरा भी गाना गड्डी में गाना अपनी गड्डी
0: अपनी गड्डी
2: कोई किसे रे छंदे भाई गल नहीं है
0: छंदे वाली गल बिल्कुल नहीं है
2: ना ना बड़ा स्पेशल जमाना बच गो है।
0: अच्छा जी डोडा था कितनी करी दूर है माँ वैष्णो देवी जी रे दरबार?
2: ये कम से कम शव शव तो ऊपर हुए हैं।
0: अच्छा
2: 100 किलोमीटर तो ऊपर हुए हैं।
0: अच्छा अच्छा
2: हाँ अच्छा ता मजेदार लाइफ सुरे चाकर नजारे इतने ट्रेन नजारा भी हरी सुरे।
0: अच्छा
2: बवन शवन सारा हेरी छुरे तो मैं चक्कर लाए छुरे।
0: अच्छा अच्छा
2: बड़ी सही सीनरी इधर अभी बड़ा मजा बड़े तड़ियार था रमन हुई ना हर पास हेरा हिंदुस्तान ने हर कोने रमन पूछ दे थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री वाई भी इंदे देखी
0: इंदे इंदे बिल्कुल इंदे जी।
2: हाँ बड़ा नजारा देखी
0: काफी ज्यादा काफी ज्यादा
2: ओ रंग बिरंगी दुनिया जेका रहना सो कटरे मोने गंज जेका रहना सो तेठी ले जिंदा मानो
0: है ना।
2: हाँ
0: चले
2: जेका रहना सो तेठी कटरे में ले जिंदा मानो
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: तेठी बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री वाले कोई दे शूटिंग का वाले कोई दे हर उन्हें रमान कोई दे तेठी
0: मोरे दरबार ले भला कुन्ना गाना चंदा ना जी।
2: दरबार कौन ना गाने चाहता कौन ना बोलता देख।
0: सही गल
2: फिर तो लोग बड़ा बड़ा खर्चा कर दे।
0: हाँ बिल्कुल जी
2: बड़ा बड़ा खर्चा कर दे देख बड़ा बड़ा खर्चा कर दे लोग
0: जी। अच्छा जी कुंडली गीत थोड़ा पसंद कर ले तो है
2: गीत सुनाए जरा ठंडी ठंडी हवा चलती चलती चिड़िया की छनकार
0: ठंडी ठंडी हवा चलती।
2: हाँ
0: क्या बात है।
2: और यार दोस्त तेरे नाम भी ले सकन।
0: हां हां बिल्कुल तुंदे यार दोस्त
2: इंदे दोस्त ने पांच श्री राम पूछ गए पुष्कर नाथ पूछ गए सोंगी राज भारद्वाज पूछ गए मेरे आशिक हुसैन अब्दुल लतीफ शेख जाफर हसन है तो ये ही एक दोस्त जो गीत डेडिकेट करना चाहनो
0: ठंडी ठंडी हवा चल दी
2: चलदी चिड़िया दी छनकार
0: चलदी चिड़िया दी छनकार। अच्छा चलिए ठीक है जी जरूर तुसु गीत हुन ले है ना जी।
2: चलो जी शुक्रिया जी धन्यवाद
0: शुक्रिया जी शुक्रिया। अच्छा तो और भी इंदे श्रोता गण के अंदर कॉल करो कर दिन सब भी है जरूर किया सो कनेक्ट कर ले लेकिन आइए जी आगाज कर लेन दिन कार्यक्रम रहे इस गीत सो गया और तो बाद

शो तो आइए इस गीतार आनंद की असोया सब जरूर लेते हैं। तो सब बनवा ने समय एफएम बैंड 91.2 MHz पर वेली गुंजन धर्मशाला सोगे और कार्यक्रम हुनु करदन अपने आर चे वेड़िए जो कि सचिन कपूर सोगे तुंद अपना गादा कार्यक्रम के सो बिल्कुल लाइव इस समय बहुत सारी चुनाव पंचायत चुनाव ने दुते 26 तारीख पहला चरण किया सो दुते शुरू हा सभी प्रतिनिधि वे दिलामान जो धक धक जरूर भोने हाँ और बहुत सारी गल्ला भोनी वापिस इच करी कर दन लेकिन फिलहाल ते लेन देन इस गीतारा आनंद।

0: शोध एफ एम बैंड इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्ज़ पर वेरी गुंजन धर्मशाला दो ऐसा भी ट्यून गुरु और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गेंद सो लाइव चल रही है ना। बहरहाल बहुत बहुत स्वागत है मौके फिर ये सब भी होने वाले रहा। चलिए चल दें और कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगू बढ़न दें और इन अगले श्रोता होगी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी। नमस्ते।
1: राकेश बोल रहा हूँ कोट खाई से।
0: अच्छा क्या बात
1: जी,
0: है
1: जी, जी, जी।
0: राकेश जी कोट खाई शिमला।
1: शिमला कोट खाई शिमला।
0: गर्मी कदे कदे है राकेश जी ये दस्सा पहले शिमला किनारी क्या टेम्परेचर है?
1: बस बढ़िया है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बढ़िया मौसम है कोट खाई का।
0: अच्छा क्या जी, बात जी, है। आज तो धर्मशाला था चले नहीं ठंडी ठंडी हवा।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके धर्मशाला का मौसम कैसा है?
0: धूप है जी, धूप है बड़े।
1: अच्छा अच्छा धूप है। इधर तो थोड़ी हल्की बारिश हुई थी, अब थोड़ी धूप है थोड़ी बारिश है, बहुत बढ़िया सुहाना मौसम है।
0: अच्छा इस किनारी तो धूप है खाली।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: अच्छा चलो बढ़िया है। मौसम तो मौसम का आनंद लेना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हर साल का जो है आनंद लेना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: मौसम का आनंद खूब लेना चाहिए और थोड़े एंजॉय भी करना चाहिए और रेडियो भी सुनना चाहिए और अपना भी मनोरंजन होता है और रेडियो का जो है 90 वर्ष भी हो रहा है तो रेडियो से हमें और कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, देश की प्रदेश की खबरें, क्या हो रहा है, क्या गतिविधि हो रही है, वो सब कुछ जो है रेडियो के माध्यम से मिल जाता है। जी जी जी जी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी जी जी
0: जी। राकेश जी कुन्ने ने गीत सुनना पसंद कर ले?
1: कोई भी सुना दो आपकी पसंद का सुनने है आज।
0: अच्छा चलिए
1: जी जी जी
0: ठीक है जी। दोस्तों का नाम लेने तुसु?
1: जी दोस्तों का नाम ऐसे है अभी तो परशोत्तम का कॉल भी लग चुका है और को है गोडी भाई है कांगड़ा गोकड़ी से और पंचीराम शर्मा पुष्करनाथ शर्मा और तमाम सुनने वाले श्रोता है जो आपके प्रोग्राम में जुड़ेंगे सबके लिए।
0: अच्छा
1: जी जी
0: चलिए ठीक है जी। धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद। चलिए श्रोताओं कार्यक्रम में दी अपनी गप्पा तो सब हूँ कर दें और पंचायत चुनाव पोलिंग पार्टी के न सो रवाना बुझ गई हिंद जी। बिल्कुल श्रोताओं दत्ता पहला चरण हा मतदान रहा 895 पोलिंग बूथ पर सुरक्षा पुख्ता बोया, संवेदनशील बूथा पर अतिरिक्त पुलिस बल भी किया सो तैनात भोया। श्रोताओ पंचायत चुनाव रे पहले चरण री तैयारी के न सुतेज बुछूरिन 72 घंटे रा विशेष निगरानी अभियान भी शुरू हुआ। श्रोताओ अवैध गतिविधियों पर पुलिस री सख्त नजर किया सो इस समय हा। श्रोताओ पंचायत चुनाव जो लेकर सुरक्षा व्यवस्था किया सो चका चौथा बिल्कुल बिल्कुल 72 घंटे रहा विशेष अभियान नाकाबंदी की ऐसा बढ़ाए है। श्रोताओ बहरहाल अगले श्रोता कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
2: नमस्ते सर जी। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। ठीक ठाक न
2: जी सर जी? ठीक ठाक जी।
0: और कर लगुरन?
2: बस कुछ नहीं प्रोग्राम सुना दे सर जी तो हम देखें खल वोट रहे वोट तैयारी है सर जी।
0: अच्छा बिल्कुल बिल्कुल
2: जी।
0: कुन्ने ने गीत सुनना जी तुसु?
2: सुनील राणा दी आवाज सुनाई ने गाना चननी।
0: चननी
2: हां जी सर जी।
0: चलो ठीक है जी जरूर सुन ले तुसु।
2: धन्यवाद सर जी। नमस्ते जी।
0: धन्यवाद जी। धन्यवाद। तैयार कार्यक्रम जो आगे बढ़ने तो सब बन रहे इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो के कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा कहना सो हूँ करते हैं। तो चलिए लोकतंत्र पर्व और लोकतंत्र पर्व में मिनी संसद व चुनाव करने वास्ते गया सो प्रदेश भर सहित सबसे बड़े सबथों मोटा जिला जिला कांगड़ा रिया गल करूँ करता जिला कांगड़ा में जिला कांगड़ा में प्रक्रिया शुरू किया सो पूछ गया शोधों तेरे वास्ते पहला चरण रहे चुनाव के न सो 26 मई मंगलवार जो हुए यानी कि दत्ते हुए इस वास्ते पोलिंग पार्टी रविवार जो कि सो रवाना करी दी तुरी थी शोतों, जबकि पुलिस विभाग री और थो सुरक्षा व्यवस्था अभी की सो चका चौं था, और बिल्कुल चका चौं था, पूरी निगरानी हाँ पंचायत में शोतों पुलिस रे की कर का कोई अवैध शराब की सोता ना मोड़ कर दे या इस प्रकार सो के है ना, तब पूरी निगरानी इस समय बहरहाल कार्यक्रम जो आगे बढ़े देन और धीरे धीरे परमेश्वर दौर के सो भी पूरा कर देन बने रहे तो सब आरजे सचिन का

0: भाई कहाँ गए।
1: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्स पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इस वक्त हिंदी अपनी गप कहना सो चल रही हिंदा। चलिए कार्यक्रम जो थोड़ा करिए और आगू बढ़े हिंद श्रोतो और कांगड़ा जिला में प्रचार थमे गाना है 288 पंचायत में मतदान श्रोतो जी बिल्कुल और कांगड़ा की पंचायत में किया सो फोकस बुना इन मुद्दे पर जिला कांगड़ा रिया है गल करिए स्वतंत्र पंचायत में गांव रे विकास को लेकर के असो ग्रामीण अब नज़र रखू कर दिन इन क्षेत्र में पक्की सड़क बुना चिंदी ठीक है सिंचाई री व्यवस्था बुना चिंदी है पीने रा पानी बुना चिंदा है स्वास्थ्य कार्य सहित विभिन्न विकास कार्य जो लेकर किया कार्य करने वे सरकारी योजना रा पात्र मनु तक लाभ पहुँचा सका और इस चीज जरी गल्ला कहन सब उच्चू कर दिन की स्ट्रीट लाइट बुना चिंदे है ना इस प्रकार री शोतों गल्ला कहन सब उच्चू कर दिन बहरहाल तो सब बन रहे ने समय आर जे सचिन कपूर सो के कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा कहना सो बिल्कुल हुनू कर दिन लाइव अपने अपने वीडियो सेट में अगर हुनू कर दिन तो सब रेडी गुंजन तो जरूर कॉल कर सकते हैं लाइव कार्यक्रम में 7088 8 8 7 0 9 8 पर नंबर आख मगे फिर आओ शेयर करना हाँ 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर तो सब सब शो तो कॉल कर सकते हैं और कॉल कर करी अपना पसंदीदा गीत क्या सो होने सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी क्या सो साझा कर सकते हैं शो तो मिनी सचिवालय रे बाहर किया सो जाम रोज लगू करता और एक मुसीबत किया सो लगू कर दिया अब शहर भी तहसील चौक रे पास मिनी सचिवालय रे गेट वे ठीक आगू वाहन वह चक्का जाम बच्चू करता है वाहन रे किया सो श्रोता मनु कहने सो मुसीबत मनु जो किया सो मुसीबत बड़ू कर दिया श्रोता और नियंत्रण ना भूने की वजह था ये वाहन पर पुलिस रो कोई नियंत्रण ना भूने की वजह था व्यवस्था किया सो करखनगरखा ठीक ना लगू कर दिया चरमराई नहीं कि छोरे व्यवस्था कुछ मनु अपना वाहन सड़क किनारे खड़े रही दिच्छू कर देन तो कदी कदी दो वाहन तो कदी त्राई वाहन चालक मिनी सचिवालय रे गेट रे आगू गया सो मतलब कुछ क्या है करू कर देन कुछ किए पार्किंग करेगा छुंदे कुछ किए पार्किंग करेगा छुंदा था इस वजह था कि श्रोता हूँ सो बार बार जाम के सो लगू करता हाँ मिनी सचिवालय रे गेट रे सोगे ये थोड़ा बन वो ध्यान देना पैना है गल्ला पर बहरहाल कार्यक्रम जो हगू बढ़ते हैं और ठंडी ठंडी हवा चल दी ये गीता री फरमाइश इन्हें करी थी जो कि डोडा जिला रे रहने वाले हैं जम्मू कश्मीर रे रहने वाले हैं पुष्पर जी आइया इन्हें वो गीत के सो है सुनाई लेंदे शो तो सब बनी रहे तुंदे अपने सामुदायिक वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगी गूंज अपने बन रही और गूंज जितने भी लक्ष्य होता इस समय के असो असू हूण कर दिन जितने भी लक्ष्य होता के असो बल्लू कर दे आइया

श्रोतु एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून कर और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा गया नए सो चल रही। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन आज मौके फेरे सभी हुने वाले रहा सभी श्रोता गण रहा। आइए श्रोतो कार्यक्रम जो हगो बढ़ंदे हिन और कार्यक्रम मंच बहुत सारी जानकारी जो तुस होगी असु शेयर करनी हिन श्रोतो और सभी री फरमाइश अभी असु जरूर पूरी करनी ने। अक फरमाइश कोट खाई शिमला तो आए थे जो बोलूँदे थे कि मेरा पसंदीदा गीत भाई सब जितने भी गदयाली गीत ने जितने भी गदयाली सिंगर हैं सो सब अपने ने है ना और सब भी ये बहुत अच्छे अच्छे गीत के इन सो गोरे लेकिन इनका यह कुर्सी पर बैठने का मतलब बनेगा कि अपनी जो इन नोए गीत इच्छु कर दें तिजो के या सो है मनु तक जरूर पहुँचान है ना। तो सो ही काम है हमेशा करते हैं इन शो तो। बहरहाल कार्यक्रम जो है थोड़ा करी और अगो जरूर बढ़न दे हिन ता दत्ते मतदाना जी ऑल द वेरी बेस्ट सभी जो सभी खासकर उम्मीदवार जो बड़े बड़ा मुबारक बुन सभी जो उम्मीदवार जो है ना और दत्ते मतदाना तो तस हिसाब हो गई कि ऐसा तो है जरूर तैयारी के अंसो बुझ चूरी बुनी है ना। अब ये डिपेंड करता मनु पर तो सू जितने एफर्ट अपने लाने थी सो तो लाई ले डिपेंड करता मनु पर कि मनु तो सू कितना प्यार दिन दिन तो कितना आशीर्वाद के अंसो दिन दिन। बहरहाल कार्यक्रम जो होगा बढ़ दिन शो तो चल दिन और इस गीता जो कर दिन इंजॉय

श्रोता एफ एम 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी है ट्यून गुड और कार्यक्रम सचिन कपूर सो के होने कर देने दी अपनी गप्पा बहुत बहुत स्वागत है मौके फिर सभी होने वाले रहा हार्दिक अभिनंदन हाँ सुनील राणा जी रहा गौरव गीत चंदनी हिस्स गीत आनंद की सो भी असु जरूर लेना है श्रोतो और ये गीत तुसु तक की असो जरूर पहुँचाना बरहाल दत्ते की असो अक मौके फिर बड़ा मुकाबला की असो बुच्चू करदा RCB GT मैच और ट्रैफिक प्लान की असो तैयार है श्रोतो धर्मशाला में बेगा 9 बजे थो लागू बुना ट्रैफिक नियम डगवा दाड़ी थो प्रवेश मुलना हा सराह थो वापसी किया सुबह हाँ जी जी जनाब आपातकालीन सेवा वास्ते किया सो ग्रीन कॉरिडोर खुला रहना ASP कांगड़ा अशोक रतने स्पष्ट स्पष्ट करो हा स्पष्ट बलो हा कि सभी मुख्य मार्ग के सो आपातकालीन सेवा वास्ते पूरी तरीके होगी खुले रहने मरीजों जो अस्पताल पहुंचाने जैसी परिस्थिति में पुलिस द्वारा तत्काल ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध किया सो करवाए गाना हा तो यदि अगर तो है जामा में फंस रहे कजो की दत्ता मैच RCB और GT रहता यदि की तो है फंस रहे इन मैच अंदर मतलब ट्रैफिक अंदर माफ करा और कुछ ऐसी इमरजेंसी आता तो है कि आसो आगो खिंच करे दस ही सकते हैं कि इस प्रकार हो गई कि आसो आसूले मरीज आ और इमरजेंसी आ है ना ता तो है आगो की आसो खिंच सकते हैं कुछ कि मुझे लगता है कि इन हिमाचल रेमन हो गए सो बड़े भोले भाले हैं आज भी हैं सिंपल हैं जी इन पहले थी है और तीनों कोई मतलब नहीं है कि चलो कोई सेलिब्रिटी छू करता ठीक गल है रोजगार मोड़ो करता सो भी ठीक आ जो रोजगार मोड़ करता टैक्सी वाले रोजगार है होटल वाले रोजगार है ना रेस्टोरेंट वाले रोजगार है अच्छी गल है हिमाचल टूरिज्म पर ही किया सो निर्भर करता है और अच्छी गल है लेकिन मुझे लगता है कि हिमाचल रमन होकर सो मतलब यहाँ कसकी तंग कर है ना तो बहरहाल लेकिन चलते तू सभी जो और कर दिन फरमाइश पूरी

शोध एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और एक कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो चल रही है ना। इस कार्यक्रम में तो सब श्रोता भी अस होगी जुड़े सकते हैं वैसे 708-8-8-709 पर कॉल करके रहे नंबर एक मौके फिर हम शेयर करना हो तो होगी 708-8-8-709 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत के श्रोताओं से सुन सकते हैं। बहरहाल अगली जानकारी तो हो गया शेयर कर दें गर्मी तो राहत पाने वास्ते कैन सो लाहौल दौड़ू कर दें सैलानी जी बिल्कुल शो तो निचले इलाके में किया सो कड़क धूप धूप के सो बुच्चू कर दिया और चीन आगे सो दुश्वार है। मनाली में भी किया सो बढ़िया मेहमानारी चहल पहल शो तो मैदानी क्षेत्र में बढ़ती गर्मी थो निजात पाने वास्ते कि असो सैलानी है मनाली और लाहौल रुख किया सो करो शुरू करी दिता है रुख करना मतलब कुल्लू मनाली लाहौल स्पीति रा मौसम इन इन्या दिना में सुहावना है शोतों इन्या दिना वे समय पर्यटक लाहौल की आसो गुच्छ करदा और यहाँ इड़ी की आसो बर्फ रे बिच खूब आनंद किया शोतों सो ले करदा है शिशु शिशु बुचिगो शोतों है ना शिशु शिशु सहित अन्य क्षेत्र में किया सो अन्य क्षेत्र रिवादी रखिया सो पर्यटक मजा ले करता है शो तो है ना जी। अबे तो ये रख कि कितनी ज़्यादा थल्ले गर्मी पे कर दिया कारण यह सब जान दें कि निचले क्षेत्र में गर्मी को बंदे का चूँकि ट्रैफिक ज़्यादा है पोल्यूशन ज़्यादा है फैक्ट्री ज़्यादा ही न पॉपुलेशन ज़्यादा है ना ता सब कुल्लू मनाली या फिर धर्मशाला जो दौड़ते हैं। अब ये चीज़ा कूड़ा करकट ज़्यादा है अच्छी सांस लेने रही तड़ी गया सो मतलब अच्छी सांस तो है ना ले सकते हैं तो ये सोचने कि ताज़ी हवा चल रही और मतलब ताज़ी हवा ताज़ी हवा की या फ्रेश हवा की सो लेने सो वह ना कर सकते हैं शोधन तो है ता ही सोचा गया तो सो आंकड़े दस ना लगो कि दिन भर में कि 17 मई जो कुतूनी प्रवेश हुई गड्डी 3,966 गड्डी के ना सो अटल टनल में प्रवेश हुई न और बार कितनी गई न 3,745 18 मई जो 3,987 गड्डी के सो अटल टनल में प्रवेश हुई और 3,508 के सो 12 आई कि वो साइडों घूमी करी आई न 19 मई जो 4,556 प्रवेश हुई न और 3,618 के सो 12 आई शो तो 20 मई जो 4,348 के सो प्रवेश हुई और 3,787 के सो बाहर निकली शो तो 21 मई जो 4,765 प्रवेश हुई और बाहर 4,258 22 मई जो 3,421 प्रवेश हुई और बाहर निकली 2,832 त्रेई और चौबीरा आंकड़ा त्रेईरा आंकड़ा ज़्यादा 23 मई जो शो तो 5,110 किया 5,110 गड्डी की आस वाटर टनल में गुजरी करी गई हाँ प्रवेश हुई और वापस 4,548 वापस आई 24 मई जो शो तो 5,000 टोटल गड्डी की सो प्रवेश हुई और 4,500 गड्डी की सो वापस आए हाँ ता तड़िया डीएसपी अपील करे कि ट्रैफिक नियम मारा के आसो आवेदन भी करो है कि ट्रैफिक नियम रा पालन किए सो जरूर कर बहरहाल तो सब बन रहे ने समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गया एफएम बैंड 91.2 MHz पर और आइए कार्यक्रम जो आगू लेकर चल दें और कार्यक्रम मंच अब है अगली जानकारी के अनुसार तो सो गया है ज़रूर शेयर कर दें इन शोधों चलिया जानकारी व पिटारा की सोई ही रहना शो तो फिलहाल इंजॉय कर दें इस प्यारे दे गीता जो तुम दे वीडियो सेट माशो तो और फिर तत्थों बाद और अगली जानकारी होगी तो शुरू करवाले सो गर्मी तो राहत पाने वास्ते की है सो कितने ज़्यादा निचले इलाके रह मन के ना सो धर्मशाला मैकलोडगंज अटल टनल बुचगे मनाली बुचगो है ना लाहौल बुचगो शिशु बुचगो इड़ी गया सो प्रवेश करू कर दे हिन तासु सब भी ऐसा गल्ला रहा विशेष ध्यान रखना कि कैन सो
मतलब इं ही रहन, इं इन द सेंस कि इन द सेंस तो समझ गए उन्हें ही रहन कि मनु वसू लगे ने। सो इन दान ता है साफ सफाई रा विशेष ध्यान के ना, सो जरूर रखना।

श्रोता एफ एम एंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून कर रहा है कार्यक्रम इंदी अपनी गप्प गैंसो तो सब हूँ करते थी अपने अपने रेडियो उस सेट में आता श्रोता आवे वक्त उचिगा तुस सभी तो अलविदा लैने रहा तुस सभी जो टाटा बाय बाय बनने रहा गंदे गंदे बस ये बोलना चाहूँ श्रोताओं की हंसते रहे मुस्कुराते रहे और माँ बाप की सेवा की आंसू करते रहे पर्यावरण जो साफ सुथरा ज़रूर रखा एनवायरनमेंट जो साफ सुथरा ज़रूर रखा शोतों और हर किसी की खरा ज़रूर करा शोतों इन शब्द था सचिन कपूर लेनु तुसु तो इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का। लो घर जा।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: Chelsea.
1: Chakana.
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: हे, तुम खबाए
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
7: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
8: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

0: नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है रेडियो गुंजन धर्मशाला, आपका अपना रेडियो गुंजन। क्या हाल चाल हैं श्रोताओं आपके? उम्मीद करता हूँ, होप सो आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने घर में अपनी सेहत का ख्याल जो है वो ज़रूर रख रहे होंगे। तो चलिए जी, सेहत का ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़रूरी भी है, बहुत आवश्यक भी है। मैं सचिन कपूर हूँ, 8 बजे तक आप हमारे साथ यूँ ही बने रहेंगे आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, अपने वीडियो सेट के साथ। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम को मैं होस्ट करने जा रहा हूँ श्रोताओं। इस कार्यक्रम में आप सभी भली भांति जानते हैं कि जानकारियों का सिलसिला जो है वो चलेगा, पिटारा जो है वो गीत संगीत का खुलेगा और अन्य बातें जो है वो आपसे होंगी। तो चलिए जी, सबसे पहले तो धर्मशाला का मौसम जो है वो चर्चा पर रहता है हमेशा, है ना, क्योंकि हम बखूबी जानते हैं कि 4 दिन अगर गर्मी है तो 5वें दिन जो है वो ज़रूर बारिश होगी, है ना। कुछ इस प्रकार का धर्मशाला का मौसम जो है वो बना रहता है। तो फिलहाल तो अभी गर्मी के दौर से जो है वो धर्मशाला के बाशिंदे निकल रहे हैं श्रोतों। इस समय 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो टेम्परेचर है श्रोतों, और नमी की बात करूँ जिसको अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी कहा जाता है, वो 25% के आसपास है। तो ये तो है श्रोतों धर्मशाला का मौसम। तो आगाज़ भी कार्यक्रम का ज़रूर होगा श्रोतों, बहुत प्यारे प्यारे गीतों के साथ जो है वो कार्यक्रम का आगाज़ हम करेंगे आपके वीडियो सेट पर। ज़िंदगी एक सफ़र है, वैसे हम सभी इसको बाखूबी जानते हैं कि ज़िंदगी जो है वो एक सफ़र है, है ना। तो आइए इस सफ़र को ही हम सुनते हैं, यानी कि इस गीत को हम सुनते हैं श्रोतों की। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आइए इंजॉय करते हैं कार्यक्रम को और आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का इस गीत के साथ।
1: जिंदगी

शुद्ध एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने रेडियो गुंजन धर्मशाला इस समय ट्यून किया है और मैं हूं सचिन कपूर आपके साथ। चलिए चलते हैं आज के विचार की ओर। श्रोताओं, कहते हैं अच्छे विचार जो है वो जीवन को उजाला देते हैं और जीवन में उजाला करते हैं। जो अच्छे विचार होते हैं, जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं श्रोताओं, और बुरे विचार जो हैं वो अंधेरा फैलाते हैं अक्सर श्रोताओं। और बुरे विचारों की और बुरी संगति की ओर जो है वो जब भी इंसान जाता है तब वो वहाँ पर जाकर खोता ही खोता है, पाता कुछ नहीं है। अच्छे विचार वाले, नेक विचार वाले इंसान के साथ अगर आप रहते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको सीखने को मिलती है, बहुत सी चीज़ें आप जो है वो इन्हेंस करते हैं श्रोताओं। सो हमेशा जो है वो अच्छे विचार वाले इंसान के पास चाहिए। अच्छे विचार जीवन में हमेशा जो है श्रोताओं वो उजाला लाते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा जो है वो तय करते हैं श्रोताओं। अच्छे विचार जहाँ जीवन में सकारात्मक और खुशियाँ लाते हैं, वहीं बुरे विचार निराशा का कारण बनते हैं श्रोताओं। जी बिल्कुल श्रोताओं, आत्मविश्वास बढ़ता है अच्छे विचारों से। जो है हमें अपनी ताकत का एहसास होता है और आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है। विपरीत परिस्थितियों में भी जो है वो सही फैसला लेने में जो है वो अच्छे विचार मदद करते हैं श्रोताओं। रिश्ते मजबूत करना भी जो है वो हम अच्छे विचारों से सीख सकते हैं श्रोताओं। यानी कि आपके विचार अच्छे होंगे तो रिश्ते नेचुरल सी बात है बने रहेंगे, है ना। लेकिन आपके विचार अगर सही नहीं होंगे तो आपके रिश्ते जो है वो डगमगाएंगे। मन में प्रेम और सहानुभूति होने से आपसी जुड़ाव जो है वो बढ़ता है श्रोताओं। सकारात्मक सोच जो है वो तनाव को कम करती है और शरीर को स्वस्थ रखती है। शरीर को हट्टा कट्टा मजबूत जो है वो रखती है। शरीर जो है वो बिल्कुल स्वस्थ जो है वो रहता है। स्वास्थ्य हमारा जो है वो सही रहता है श्रोतों। वहीं बुरे विचारों की अगर हम बात करें श्रोतों, तो बुरे विचार मन में जो है वो अनजाना डर सा लगाते हैं श्रोतों, और अनजाने डर की शाखा सी जो है वो पैदा कर देते हैं। मुझसे नहीं होगा जैसी सोच इंसान को कोशिश करने से रोकती है श्रोतों, है ना। लगातार नकारात्मक सोचने से मानसिक और शारीरिक थकान होती है। जैसे श्रोतों एक छोटा सा दीपक बड़े से बड़े अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही अच्छा विचार पूरे जीवन को बदल सकता है श्रोतों। इसलिए हमें हमेशा अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, सकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहिए। जो लोग आपके साथ अच्छा करते हैं, जो लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनके साथ जो है वो ज़्यादा समय व्यतीत करें। जो यहाँ वहाँ की चुगलियाँ करते हैं, वहाँ यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, या फिर नेगेटिव चीज़ें जो है वो आपके समक्ष रखते हैं, नेगेटिव सोच जो है वो आपके समक्ष रखते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के साथ ना रहिए श्रोताओं। चलिए आज के विचार हो गया है, अब हम आपको लेके चलेंगे

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है तो चुपके से कुछ कहा है।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज।
2: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। और आइए कार्यक्रम को लेके चलते हैं आप

सभी को। देखिए, गर्मी का एहसास ना केवल धर्मशाला में है, बल्कि मैं फिर कहना चाहता हूँ एक बार फिर से कि हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं वो थोड़े से फिर से ठंडे हैं, लेकिन मैदानी इलाकों की अगर आप बात करेंगे श्रोताओं, तो वो बहुत गर्म है। और मैदानी इलाकों के बहुत सारे लोग जो हैं वो धर्मशाला या कुल्लू मनाली या शिमला जैसी जगहों पर, हिमाचल प्रदेश में जो हैं वो उन जगहों पर जो है वो शिफ्ट हो गए हैं श्रोताओं। और अभी भी गर्मी जो है वो लगातार बढ़ रही है। मैदानी इलाकों की बात करें, आज तो खैर धर्मशाला में भी काफ़ी तेज़ धूप जो है वो हमें देखने को मिली श्रोताओं। गर्मी से राहत पाने के लिए जो है वो लाहौल दौड़ रहे हैं अब सैलानी। जी बिल्कुल, आप आंकड़े सुनेंगे श्रोताओं तो आप थोड़ा सा जो है वो डगमगा जाएंगे कि हाँ वाकई में ही इतनी गाड़ियाँ अटल टनल में जो है वो प्रवेश हुई हैं। जी बिल्कुल श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि निचले इलाके में कड़कती धूप में जो है वो जीना दुश्वार हो चुका है। इस समय मनाली में बढ़ रही है मेहमानों की चहल पहल। मैदानी क्षेत्र में बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए सैलानियों ने मनाली और लाहौल का रुख करना शुरू कर दिया है। कुल्लू मनाली लाहौल स्पीति का मौसम इन दिनों सुहावना है। दिन के समय पर्यटक लाहौल जा रहे हैं और यहाँ बर्फ के बीच में जो है वो आनंद ले रहे हैं, ज़िंदगी जीने का जो है वो मज़ा ले रहे हैं श्रोताओं। सीसु और अन्य जगहों पर जो है इन वादियों का मज़ा ले रहे हैं, इन हवाओं का मज़ा ले रहे हैं, इन फिज़ाओं का जो है वो मज़ा ले रहे हैं पर्यटक श्रोताओं और पहुंच रहे हैं। अब आप आपकी ओर जो है मैं आंकड़े आपको बताता हूँ, आंकड़ों की ओर हम चलते हैं श्रोताओं। अटल टनल में जो है वो दिन के समय, मैं 17 मई की बात करता हूँ, आज तो 25 है, 24 तक आपको आंकड़े बताऊंगा मैं। अटल टनल में दिन के समय जो है, मतलब दिन नहीं पूरा 24 आवर्स, प्रवेश की हुई गाड़ियाँ लगभग 3,500 से ऊपर थी श्रोताओं। 18 मई को 3,987 थी, 19 मई को 4,556 थी, 20 मई को 4,348 थी, 21 मई को 4,765 थी, 22 मई को 3,221 थी, 23 मई को 5,110 थी और 24 मई को, पिछले कल की अगर मैं बात करूं तो प्रवेश जो हुई है अटल टनल में गाड़ियां वो लगभग 5,000 के करीब जो है वो आंकड़ा बता रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये हाल हो चुका है इस समय मैदानी इलाकों का कि लगभग आधे से ज़्यादा सेक्टर जो है वो मनाली में घूम रहे हैं। और ऊना का तापमान तो स्टार्टिंग से ही चर्चा पर रहता है श्रोताओं, 41 डिग्री पार कर चुका है ऊना का तापमान इस समय। तो कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा, आप सभी बने रहिएगा आरजे सचिन कपूर के साथ। आइए सुनते हैं आप सभी के बीच में ये प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोताओं आप सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव अपने अपने रेडियो सेट पर। तो श्रोताओं अब वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का और वापस मिलते हैं फिर अंतराल के बाद। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ यूं ही।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: श्रोता FM 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और अंतराल के बाद आप सभी के एक बार से पुनः मैं सचिन कपूर स्वागत करता हूँ वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। आइए जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को श्रोताओं कार्यक्रम में थोड़ी सी और आगे, निजी स्कूल से बच्ची को जो है वो अगवा करने की कोशिश की। जी बिल्कुल, शिमला में छात्रा को लेने पहुँचे 3 अनजान व्यक्ति, श्रोताओं स्कूल प्रशासन ने बुलाई पुलिस। स्कूल की छुट्टी का समय था, बच्चे अपने अभिभावकों के साथ जो है वो घर लौट रहे थे, तभी अचानक 2 पुरुष और 1 महिला स्कूल परिसर में पहुंची और 3री कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा को अपने साथ ले जाने की बात कहने लगे। स्कूल प्रशासन को उनकी गतिविधियां जो है वो कुछ अजीब लगी, तो तुरंत सतर्कता स्कूल प्रशासन ने बरती श्रोताओं, और बच्ची को उनके साथ भेजने से जो है वो इनकार कर दिया गया श्रोताओं। बाद में मामले की सूचना पुलिस को दी गई। ये मामला शिमला ज़िला के ठियोग उपमंडल का है श्रोताओं, एक निजी स्कूल का है ठियोग का। पुलिस के अनुसार इस संबंध में जो है वो ठियोग थाना में भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत स्कूल की वाइस प्रिंसिपल सुनीता शर्मा ने दर्ज करवाई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 22 मई को जो है वो दोपहर करीब 2:50 पर स्कूल में छुट्टी का समय था, इसी दौरान 2 पुरुष और 1 महिला स्कूल परिसर में पहुंची और छात्रा को अपने साथ ले जाने की बात कही। स्कूल प्रशासन ने जब उनसे पूछताछ की और उनसे वार्तालाप की और तब उन्हें थोड़ा सा जो है वो संतोषजनक जो है वो जानकारी लगी श्रोताओं, जब उन्होंने बातचीत की तो वो फंबल हुए होंगे, घर नहीं बता पाए होंगे अच्छे से या नाम नहीं बता पाए होंगे, कुछ चीज़ें जो है वो स्कूल प्रशासन को अनबैलेंस लगी श्रोताओं। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने बच्ची को सुरक्षित अपने पास रखा और किसी भी तरह का जोखिम लेने से जो है वो बचते हुए तुरंत पुलिस को जो है वो सूचित किया श्रोताओं। चलिए, जानकारियों का पिटारा आप सभी के वीडियो सेट पर यूं ही खुलता नजर आएगा आप सभी को। आइए जी, लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से।

শ্রোতা এফএম ব্যান্ড 91.2 তো মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা পর সভি নে টিউন কিয়া হ্যায় ওর মেয়ে হুঁ আপকে সাথ আপকা আপনা আরজে রেডিও জো কি সচিন কাপুর বহুত বহুত স্বাগত হ্যায় জি আপ সভি সুননে ওয়ালো কা সভি শ্রোতাগণ কা তো আইয়ে জি পঞ্চায়েত চুনাব ওর কল হ্যায় পঞ্চায়েত চুনাব বহুত সারি জগাহোঁ পর শ্রোতাও পোলিং পার্টিয়াঁ জো হ্যায় ও ভি রওনা হো চুকি হ্যায় শ্রোতাও ওর কল হোগা পহলা চরণ कल होगा पहले चरण का मतदान। जी बिल्कुल श्रोताओं, ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व में मिनी सांसद का चुनाव करने के लिए जो है वो प्रदेश भर सहित सबसे बड़े ज़िला कांगड़ा में प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्रोताओं, इसके लिए पहले चरण के चुनाव 26 मई मंगलवार को होगी कल। इसके लिए पोलिंग पार्टियां रविवार को रवाना कर दी गई हैं, जबकि पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा व्यवस्था जो है उसके वो पूरी तैयारी से है। श्रोताओं, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी चकाचौंध है। कोड ऑफ कंडक्ट के 72 घंटों के भीतर अवैध गतिविधियों को लेकर चौकसी और अधिक जो है वो बढ़ा दी गई है। श्रोताओं, पंचायत चुनाव के पहले चरण को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस विभाग ने संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए हैं। एसपी कांगड़ा अशोक रतन जी ने बताया कि पहले चरण के मतदान के लिए कुल 895 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनकी संवेदनशीलता का आकलन कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। एएसपी ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि मतदाता बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकारों का प्रयोग कर सके। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाना पुलिस की जो है वो प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी आपदा स्थिति या कानून व्यवस्था से जुड़ी घटना से तुरंत निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने अलग अलग स्तरों पर विशेष टीम गठित की है। एसपी ने बताया कि सब डिवीज़न स्तर पर विशेष निगरानी एवं टीमें जो हैं वो बनाई गई हैं। हर डिवीज़न के लिए थाना स्तर पर जो है वो टीम तैनात की गई है। थाना स्तर पर जो है वो श्रोतों क्विक रिस्पॉन्स टीम तैनात की गई है, जो किसी भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई करेगी। एसपी ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को चुनाव ड्यूटी के दौरान सतर्क रहने और हर गतिविधि पर नज़र बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। आइए चलते हैं, आप सभी बने हुए हैं इस समय वेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो जो कि लेके चलते हैं आप सभी को श्रोताओं इस प्यारे से गीत की ओर।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर 2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी, हार्दिक अभिनंदन है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को अगली जानकारी की। और श्रोताओं, कहीं ना कहीं करियाड़ा के लोग ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो इस समय परेशान हुए हैं। लोगों का गुस्सा जो है वो ज़रूर फूटेगा धीरे धीरे। हालात उस समय बेकाबू हो गए श्रोताओं जब एक ही हफ्ते के भीतर जो है वो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 5वीं बार हुई बढ़ोतरी का असर जनता के गुस्से के रूप में सड़क पर फूटा। बढ़ती महंगाई की मार से परेशान ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी का माहौल जो है वो पूरी तरह से गर्मा गया। श्रोताओं, गांव के मुख्य चौराहे पर जुटे लोगों का आक्रोश देखते ही बन रहा था। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से परिवहन खेती और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ रहे भारी असर को लेकर ग्रामीणों ने साफ कहा है कि अब हालात असहनीय हो चुके हैं। जैसे जैसे दाम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आम आदमी की जिंदगी और कठिन होती जा रही है। इस विरोध प्रदर्शन की खास बात ये रही कि इसमें नारी शक्ति की भी मजबूत भागीदारी रही। महिलाओं ने भी खुलकर मोर्चा संभाला और महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की। कई महिलाओं ने कहा कि रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है और हर दिन बढ़ती कीमतों ने घर चलाना कहीं ना कहीं तो मुश्किल कर दिया है। श्रोताओं, वाकई में ही मुश्किल है। ये सरकार के खिलाफ हल्ला बोल है ग्रामीणों का और ये सिर्फ एक ही गांव जो है वो अभी तक सामने आया है। बाकी न जाने किस तरह से क्या चीज़ें जो है वो बनती है। बहरहाल आप सभी बने हुए हैं समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं और लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर
1: और बेल आइकन को

उठो तो मैं भी यहाँ पे हूँ बिल्कुल। आप सभी सुन रहे हैं समय FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। कृपया विलय की प्रतीक्षा करें।

0: स्वामी पाईस्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में और तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
1: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
2: Several key agreements were signed.
3: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
2: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
0: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम पर और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इनमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से FM 91.2 MHz पर। आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ सचिन कपूर, आपका अपना, माफ करें RJ। शांतिपूर्ण मतदान करवाने को पुलिस बल रवाना। श्रोतों जी बिल्कुल, आगामी पंचायती चुनाव को शांतिपूर्ण और स्वतंत्रता और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु पुलिस बल को रवाना किया गया है। आगामी पंचायत चुनाव को पूरी तरह से शांतिपूर्ण, स्वतंत्रता, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस जिला नूरपुर द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। SP नूरपुर कुलभूषण वर्मा ने बताया कि इसी कड़ी में रविवार को पुलिस थाना इंदौरा और पुलिस थाना फतेहपुर में चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए जा रहे पुलिस कर्मियों के लिए विशेष सत्र का आयोजन जो है वो किया गया है। विशेष ब्रीफिंग सत्र का आयोजन जो है श्रोतम वो किया गया है। इस ब्रीफिंग के दौरान सुरक्षा बलों को निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर विशेष रूप से संवेदनशील किया गया है और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सभी पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने ताकि मतदाता बिना किसी डर या प्रभाव के अपने मताधिकारों का प्रयोग जो है वो कर सके। मतदान के बाद मत पेटियों को पूरी तरह सुरक्षित अभिरक्षा में रखने और उन्हें रूम तक सुरक्षित पहुंचाने की कार्य योजना चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सभी को जो है आदर्श आचार संहिता और कानूनी प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना, मतदान के दौरान और उसके बाद क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय घटना या उड़दंगियों से सख्ती से निपटना। ब्रीफिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज ही सभी पुलिस जवानों और अधिकारियों को जो है वो पोलिंग पार्टियों मतदान दलों के साथ जो है वो श्रोतों कहीं ना कहीं जो है वो भेज दिया गया है, और शांतिपूर्ण मतदान करवाने को पुलिस बल जो है वो रवाना भी हो चुका है। श्रोतों अपनी अपनी जगहों पर, अपनी अपनी जगहों के लिए, अपनी अपनी प्लेसेस के लिए। बहरहाल आप सभी बने हुए समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ FM 91.2 MHz पर इस समय चला है गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम, बिल्कुल लाइव आप सुन रहे हैं। आइए जी कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और बहुत सारे हमारे पास पिटारे हैं गीत संगीत के, जो कि हम धीरे धीरे जो है वो खोल रहे हैं श्रोतों पर, हाल लेके चलेंगे आप सभी को। चलिए आप सभी को इच्छा तो ज़रूर होगी एक प्यारा सा गीत सुनने की, है ना जी, है इच्छा या नहीं बोलिए। बिल्कुल है, तो आइए, इच्छा जो है वो कभी किसी की नहीं मारनी चाहिए, सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा।

शोधों 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव कार्यक्रम सुन रहे हैं। शोधों आपको याद है आज से 3 दिन या 4 दिन पहले जो है आपने वेडी गुंजन पर यह खबर सुनी होगी कि बर्जेश्वरी माँ मंदिर के पास जो है वो एक चेन स्निचर ने जो है वो चेन खींची है। तो जी हाँ 20 मई को यह हादसा हुआ था। श्रोतों 20 मई 2026 को कांगड़ा के मंदिर बाजार में एक बुजुर्ग महिला के साथ हुई चेन चपटमारी की वारदात को कांगड़ा पुलिस ने महज 3 दिन में जो है वो सुलझा दिया है। वो श्रोताओं सुलझाते हुए दोनों आरोपियों को बाहरी राज्यों से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के निशानदेही पर छीनी गई सोने की चेन भी बरामद कर ली है। डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि 20 मई को सुबह मंदिर बाजार में एक बुजुर्ग महिला से मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने अचानक झपट मारकर उनकी सोने की चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए। सुबह का समय होने के कारण वहां कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। घटना के बाद महिला ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद उनके दामाद ने पुलिस थाना कांगड़ा पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें आरोपी और उनकी बाइक कांगड़ा स्थित डोमिनोज के समीप एक घर की ओर जाते दिखाई दिए। पूछताछ में पता चला कि दोनों युवक बाहरी राज्य से संबंध रखते हैं और कबाड़ का काम करते हैं। पड़ोसियों ने उनके मोबाइल नंबर भी पुलिस के साथ साझा किए और यह भी बताया कि दोनों किसी निजी काम से पंजाब गए हैं। इसके बाद SHO कांगड़ा संजीव कुमार और मामले के जांच अधिकारी ASI जगपाल सिंह ने जगपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के लिए रवाना हुई। वहां पुलिस ने राहुल 24 निवासी गांव डकोर जिला महेंद्रगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। इसकी कार्रवाई में महेंद्रगढ़ की CI टीम का सहयोग भी सराहनीय रहा। श्रोतों वही दूसरे आरोपी सनी कुमार 28 उसकी उम्र थी को गांव कोटपुतली जिला जयपुर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने छीनी गई

इन किवतपुर स्थित शैली ज्वेलर्स को जो है वो बेच दी थी। इसके बाद पुलिस टीम ने किवतपुर पहुंचकर दुकान पर छापा मारा और वहां से महिला की छीनी गई सोने की चेन बरामद कर ली। श्रोताओं, पुलिस ने दोनों आरोपियों को जो है वो रविवार को कांगड़े की स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से पुलिस रिमांड लेकर उनसे और गहन पूछताछ की जाएगी। पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कांगड़ा की कड़ी निगरानी में चली। महेंद्रगढ़ पुलिस के सहयोग और कांगड़ा थाना पुलिस की मेहनत से इस मामले को जल्द सुलझाकर पीड़ित महिला को जो है वो इंसाफ मात्र 3 दिन में दिलाया। जी बिल्कुल श्रोताओं, आप सभी बने हुए इस समय FM बैंड 91.2 MHz पर वीडी गुंजन पर। और श्रोताओं, कहते हैं ना कि देखिए, बेशक और कम पैसे मिलते होंगे मेहनत से कमाए हुए, लेकिन जितने भी मिलते हैं वो सुकून देते हैं, वो इज़्ज़त देते हैं, वो मान सम्मान देते हैं। कम पैसे कमा लो, लेकिन इस तरह की चोरी चकारी करके जो है वो अपना और अपने घर वालों का सर जो है वो झुकने मत दो। मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, मेहनत कीजिए, सब कुछ मिलता है ज़िंदगी में। लेकिन इस तरह की चोरी चकारी करोगे तो फिर मात्र अदालत, पुलिस थाना और घर वालों की इंसल्ट ही मिलेगी।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। तो आइए श्रोतो, उन कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं सचिन कपूर के साथ। बहरहाल राजस्थान रॉयल्स जो है वो प्लेऑफ में अब पहले एलिमिनेटर में जो है वो 27 को हैदराबाद से भिड़ेगी श्रोतो। जी बिल्कुल, आप सभी समय सुन रहे हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला और ये खेल समाचार है। राजस्थान प्लेऑफ में अब पहले एलिमिनेटर में 27 को जो है वो हैदराबाद से भिड़ेगी। बहरहाल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और पाक को खून के आंसू रुलाएंगे अब मोदी, ब्यास में मिलाएंगे चंद्रा का पानी 2351 करोड़ की योजना को मंजूरी। हिमाचल में 4000 मेगावाट बिजली पैदा होगी श्रोतो। पंजाब हरियाणा दिल्ली और राजस्थान को मिलेगा पानी। प्रोजेक्ट के लिए जो है वो लाहौल में बनेगी 8.7 किलोमीटर सुरंग। श्रोतों कार्यक्रम में गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और आइए अब वक्त हुआ है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद श्रोतों बहुत सारी और जानकारियां जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे और बिल्कुल कल चुनाव है, चुनाव का माहौल है, आप ज़रूर जो है वो वोट डालने ज़रूर जाएं। मत अधिकार जो है वो आपका अधिकार है, मतदान जो है वो ज़रूर करें और एक अच्छे उम्मीदवार को जो है वो ज़रूर जताएं। आइए फिलहाल छोटे से अंतराल के बाद मिलते हैं आप सभी से।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये आवाज दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
3: लो घर जा।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
4: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
5: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
4: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
4: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
6: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
7: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: 这是
1: 超开脑。
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी यह तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: हे, तुम कब आए?
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मांग गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
7: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
8: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ,

शोध एफएमएंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। बिल्कुल कल मैं फिर से कहना चाहता हूं कि कल जो है वो चुनाव है, तीन चरण में होंगे। कल पहला चरण है 26, 28 और 30 को, और 31 को जो है वो एमसी धर्मशाला का रिज़ल्ट भी जो है वो आ जाएगा। अब जनता जनार्दन है, मैं हमेशा कहता हूँ जनता फैसला लेगी कि एमसी में किसका राज होगा, भाजपा या कांग्रेस का। जी बिल्कुल, फ़िलहाल आपको क्या लगता है कि एमसी में किसका राज होगा आप ज़रूर हमें बता सकते हैं श्रोताओं 701-811-709-1 पर मैसेज करके कि एमसी पर जो है वो किसका राज होगा, नगर निगम में जो है वो किसका राज होगा। बहरहाल लेके चलते हैं आप सभी को अंतराल के बाद इस प्यारे से गीत की ओर।

0: चलिए श्रोतो, आप तब तक नाम पूछिए सागर वाली आंखों जैसी के पास, और हम आपको लेके चलेंगे अब प्रादेशिक समाचारों की ओर। आप सभी सुन रहे हैं सम एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला। 7:45 हो गए हैं और श्रोतो, अब वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन में प्रादेशिक समाचारों का।
1: पहले चरण के चुनाव में कल 1293 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी लोगों से जनगणना कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने का किया आग्रह। 16 जून से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। राज्यपाल से की हस्तक्षेप की मांग। और डीडी न्यूज की महानिदेशक ममता वर्मा ने दूरदर्शन केंद्र शिमला में नए पॉडकास्ट स्टूडियो महारा हिमाचल का किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों को देश भर में सर्वश्रेष्ठ बनाया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक स्तर पर बदलाव किए हैं। उन्होंने आज हाल ही में स्तरोन्नत किए गए सीबीएसई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल छोटा शिमला में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से सीबीएसई प्रणाली को लेकर सवाल भी पूछे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटा शिमला स्कूल में इस वर्ष 30 जून से पहले अध्यापकों के सभी खाली पद भर दिए जाएंगे और सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को अब अधिक विषयों का विकल्प मिलेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्यार्थियों से 5 जून को शिमला में होने वाली एंटी चिट्टा रैली में भाग लेने का आह्वान किया। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव के तहत कल 1293 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू होगी और कल शाम तक इसके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने आज शिमला में बताया कि 8,198 अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दूसरे चरण में 28 मई जबकि तीसरे चरण में 30 मई को वोट डाले जाएंगे।
2: टोटल पूरे हमारे 21,678 मतदान केंद्र हमने स्थापित किए हैं, जिसमें से हमारे 16,539 मतदान केंद्र जो बिल्कुल सामान्य हैं, लगभग 3,554 संवेदनशील हैं और 1,585 मतदान केंद्र जो है वो अति संवेदनशील हैं और उनके ऊपर वेबकास्टिंग की जा रही है, लाइव वेबकास्टिंग होगी। तो टोटल हिमाचल में 50,80,000 मतदाता है, जिसमें से हमारे 25,08,000 पुरुष हैं और 25,12,000 महिलाएं फर्स्ट टाइमर वोटर हैं। वो हमारे 52,350 वो नए वोटर हैं जिनमें ऐड हुए हैं बच्चे 18 साल वाले। ग्राम पंचायत भाटा वाली विकासखंड पौंटा साई में 4,623 मतदाता हैं इसमें, और सबसे कम जो है वो पूहू की ग्राम पंचायत सुमरा में है, वहाँ पे केवल 178 मतदाता है।
1: प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में भी पंचायत चुनावों को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। पहले चरण में जिला में 287 पंचायतों में मतदान होगा। दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल पंचायत में मतदान के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने आज धर्मशाला में बताया कि बड़ा भंगाल पंचायत में डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को की जाएगी।
3: हमारी 287 पंचायतें इसमें शामिल हैं। हमारा बड़ा बंगाल की एक पंचायत है, उसकी मतगणना कल नहीं हो पाएगी। वहाँ पर पोलिंग पार्टी मतदान संपन्न करवा कर वापस यहाँ पर आएंगे। उनकी जो मतपेटियाँ हैं उनको हम स्ट्रांग रूम में सील करके रखेंगे और 31 तारीख को जिस दिन हमारी जिला परिषद और BDC की काउंटिंग होनी है उनके साथ साथ बड़ा बंगाल की पंचायत की मतगणना भी की जाएगी।
1: सोलन जिला में पहले चरण के मतदान कल 87 पंचायतों में होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी मनमोहन शर्मा ने बताया कि जिला में कुल 3,52,901 मतदाता पंजीकृत है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर CCTV से निगरानी की जाएगी और इन्हें वेबकास्टिंग से जोड़ा गया है।
4: जिला सोलन में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 26 तारीख से शुरू हो रहे हैं। पहले फेज में 87 पंचायतों में चुनाव होंगे और प्रशासन द्वारा जो संवेदनशील मतदान केंद्र है और जो हाइपर सेंसिटिव है उनके लिए CCTV लगाने की व्यवस्था की है। 549 पोलिंग पार्टीज है पूरे जिला में, जो कि 3 चरणों में निर्वाचन के कार्य को पूरा करेंगे। मतदाताओं से मैं यही अपील करूंगा कि इस अवसर पर अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी लोगों से जनगणना कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आग्रह किया है। जनगणना निदेशालय की निदेशक दीप शिखा शर्मा ने आज शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की और उन्हें जनगणना 2027 के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई के बीच करवाया जाएगा। लोगों को इस बार स्वगणना का विकल्प भी दिया गया है और पहली से 15 जून तक स्वगणना पोर्टल पर जानकारी दर्ज करवाई जा सकती है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल एट द रेट AIR न्यूज अंडरस्कोर शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला स्थित लोक भवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से भेंट की और उन्हें इस बारे में एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने चुनाव आचार संहिता के बीच मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और कई ऐसे फैसले लिए जिनका असर पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि नगर निगमों व नगर पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों को प्रभावित करने के लिए नियमों में बदलाव लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। भाजपा ने इन सभी मुद्दों पर राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की।
5: चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। कॉर्पोरेशन के चुनाव में जाते हैं, पार्टी के सिंबल पर चुनाव हो रहा है और आचार संहिता लगी हुई है। मुख्यमंत्री जाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस का काउंसलर चुन करके भेजिए, मैं 50 लाख रुपए आपके लिए विकास के लिए दूंगा। ये सीधी सीधी आचार संहिता के उल्लंघन की खुलेआम जो है जिसको शुरुआत की गई, और आचार संहिता के बीच में कैबिनेट के फैसले लिए जाते हैं। ऑफिशियल ब्रीफिंग ना करके मीडिया को जो है वो सारे के सारे फैसले बता दिए जाते हैं और फैसले के लिए जो चुनाव को प्रभावित करते हैं।
1: दूरदर्शन समाचार नई दिल्ली की महानिदेशक ममता वर्मा ने आज दूरदर्शन केंद्र शिमला में मारा हिमाचल नाम से नए पॉडकास्ट स्टूडियो का शुभारंभ किया। डीडी न्यूज हिमाचल में संचार व संवाद की दिशा में एक नवाचार किया है। मारा हिमाचल की टैगलाइन अपने लोग अपने किस्से रखी गई है। ममता वर्मा ने इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि इससे दर्शक समाज के कई जाने अनजाने लोगों की उपलब्धियों के बारे में जान सकेंगे। इस मौके पर दूरदर्शन व आकाशवाणी के क्लस्टर प्रमुख व उप महानिदेशक कश्मीर सिंह, दूरदर्शन केंद्र शिमला की समाचार प्रमुख नंदिनी मित्तल, आकाशवाणी शिमला के समाचार प्रमुख रितेश कपूर, आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख अनिल वर्मा और दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रमुख विकास कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 6ठी से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की कवायद तेज कर दी है। बोर्ड के सचिव विशाल शर्मा ने धर्मशाला में बताया कि स्कूली विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक व डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में AI शिक्षा की आवश्यकता बढ़ने वाली है और इसी उद्देश्य से स्कूल शिक्षा बोर्ड ने AI को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। विशाल शर्मा ने बताया कि इस बारे में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।
6: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। पूरे वर्ल्ड की जो AI लिटरेट संख्या है उसमें 17% जो है वो हिंदुस्तान में, हम इस पाठ्यक्रम को लागू नहीं कर पाए थे, तो इसमें हम भी पीछे नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए हमने एक पाठ्यक्रम 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक जो है यहाँ पे हमने 2 कार्यशालाएं की थी। राज्य सरकार से हमने सेक्रेटरी एजुकेशन को अनुरोध किया कि आप हमें प्रेजेंटेशन के लिए समय दें, किस तरीके से इस पाठ्यक्रम को लागू करना है, कब लागू करना है, इसके बारे में फिर राज्य सरकार जैसा निर्णय लेगी वैसा हम आगे करें।
1: राज्य सरकार ने प्रदेश में ईद उल जुहा के अवकाश में बदलाव किया है। आज जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में अब 27 की बजाय 28 मई को ईद उल जुहा पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय में 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य लंबित मामलों का सुलह और आपसी सहमति से निष्पादन करना है। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को विशेष लोक अदालतों में शामिल करने के लिए एक गूगल फॉर्म तैयार किया गया है। ये गूगल फॉर्म सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट www.sci.gov.in पर उपलब्ध है। गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 मई तय की गई है। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल का पहला क्वालिफायर मैच कल खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मैच को जीतने वाली टीम आईपीएल के फाइनल में पहुंचेगी। इस मैच को लेकर एचपीसीए ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के लोकभवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के साथ प्रदेश में विकास व जन कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान सुशासन और प्रदेश में चलाई जा रही विकासात्मक पहलों पर भी संवाद किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बनाया जाएगा देश भर में सर्वश्रेष्ठ। सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को मिलेगा अधिक विषयों का विकल्प। पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव में कल 1293 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी लोगों से जनगणना कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने का किया आग्रह। 16 जून से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। राज्यपाल से की हस्तक्षेप की मांग। और डीडी न्यूज की महानिदेशक ममता वर्मा ने दूरदर्शन केंद्र शिमला में नए पॉडकास्ट स्टूडियो मारा हिमाचल का किया शुभारंभ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: श्रोता एफ एम 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। तो श्रोताओं, अब वक्त हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। जाते जाते प्यारा सा गीत आपको ज़रूर सुनाएंगे और यही कहूँगा, माँ बाप की सेवा ज़रूर करें, पर्यावरण का ध्यान ज़रूर रखें जितना हो सकता है उतना, लोगों की हेल्प जो है वो ज़रूर करें, मेहनत करते रहे, किस्मत जो है वो कभी भी आपका साथ दे सकती है, इस बात का यकीन मानिए। इन शब्दों के साथ मैं सचिन कपूर लेता हूँ अब आपसे अलविदा। नमस्ते धर्मशाला।